0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर आज नई दिल्ली में वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में श्री वेवर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के व्यापारिक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनकी इस यात्रा से भारत बेल्जियम संबंधों को गति मिलने की संभावना है।
1: यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। साथ ही यह भारत यूरोपीय संघ संबंधों को मजबूत करने में बेल्जियम की महत्वपूर्ण भूमिका को और सुदृढ़ करेगी। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $13 अरब से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण साब बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसंख्या वृद्धि और भविष्य की जल आवश्यकताओं और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को संवेदनशील बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में कल शहरी स्थानीय निकायों को भी इसी प्रकार के चिंतन शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने जल संरक्षण से जुड़े उपाय अपनाने का आह्वान किया। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह आज मुंबई में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और बैंकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को दिए जाने वाले ऋण की औसत राशि बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत उद्यम ऋण को दोगुना करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय दीन दयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को लागू कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को GSLV-F17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-05 अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन अंतरिक्षयान है और ये भू समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाने वाला भारत का पहला इमेजिंग उपग्रह है। उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV टीकाकरण का विशेष अभियान आज से इस महीने की 17 तारीख तक राज्य भर में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत 14 साल की उम्र की लगभग 10 लाख पात्र किशोरियों को HPV टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। HPV टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव का एक महत्वपूर्ण उपाय है। भारत का 11 सदस्यीय विशेषज्ञ दल कल नेपाल के त्रिशूली बाजार पहुंच गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेष उपकरणों के साथ पहुंचा यह दल आज से नेपाल की सेना के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य की शुरुआत करेगा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद से भारत की नेपाल को लगातार सहायता जारी है। भारतीय वायुसेना का 5वां विमान कल मानवीय सहायता लेकर काठमांडू पहुंचा। इसमें एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारक दवाएं, सर्जिकल उपकरण और अन्य जरूरी दवाओं सहित लगभग 5.5 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। 6 टन से अधिक बचाव उपकरण भी भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 74 टन राहत सहायता भेजी है। इस बीच नेपाल और तिब्बत में अचानक आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,250 हो गई है। बचावकर्मी बारिश और मलबे के बीच लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। भोटे कोशी नदी

0: नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व इस समय अब तक की सबसे बड़ी भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में बेल्जियम जैसे महत्वपूर्ण साझेदार विचार विमर्श के लिए सार्थक अवसर प्रदान करते हैं। बेल्जियम के रक्षा मंत्री थियो फ्रैंकन ने भारत को अधिक जनसंख्या तथा उच्च प्रौद्योगिकी वाला देश बताया है। उन्होंने भविष्य की परियोजनाओं के लिए बेल्जियम के साथ सहयोग करने की जरूरत पर बल दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ईओएस 5 का प्रक्षेपण कल मध्यरात्रि 2:55 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। उपग्रह को जीएसएलवी F-17 रॉकेट से प्रक्षेपित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल नई दिल्ली में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के साथ बैठक की। इसमें स्कूल शिक्षा सुधारों के अगले चरण पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापारिक सम्मेलन में भारत की सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी जिक्र किया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमरीकी बैंक के सहयोग से भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक व्यवधानों और चुनौतियों के बावजूद भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत और फ्रांस ने वस्त्र और फैशन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए पेरिस में समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्त्रों और कौशल को बढ़ावा देना है। भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम ने वस्त्र मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। प्रीमियर विजन सोसाइटी एनोनियम विश्व का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और फैशन व्यापार मेला है। प्रवर्तन निदेशालय कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 290 करोड़ रूपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में कोलकाता के 11 परिसरों में छापेमारी कर रहा है। निदेशालय के अनुसार कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण राशि को निजी हितों के लिए बाद में समूह की अन्य इकाइयों को भेज दिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि रूस के भीतर यूक्रेन के हमलों और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का रूस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। श्री रूबियो ने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन ऐसी व्यवस्था पर बातचीत कर रहे हैं जिनसे यूक्रेन उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों का उत्पादन कर सके। रूबियो ने यह बात कल एक साक्षात्कार में रूस के ईरान को समर्थन और यूक्रेन में जारी युद्ध पर चर्चा के दौरान कही। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेन रूस के भीतर सैन्य और ऊर्जा से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के सत्र में मामूली बढ़त देखी गई। ताजा जानकारी के अनुसार सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 76,779 पर और निफ्टी 53 अंक बढ़कर 23,967 पर पहुंच गया। क्षेत्रीय स्तर पर रियल एस्टेट, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और पूंजीगत वस्तुएं प्रमुख लाभ कमाने वाले क्षेत्र रहे। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने चीन मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is currently holding bilateral talks with his Belgian counterpart Bart De Wever in New Delhi. Both leaders will discuss the entire spectrum of bilateral relations as well as regional and global issues of mutual interest. Several agreements are expected to be signed after the talks. This morning, the Prime Minister of Belgium visited the Rajghat and paid tributes to Mahatma Gandhi. The Belgian Prime Minister arrived in New Delhi last night on a three-day visit to India. He is accompanied by Belgian Minister of Defence Theo Fonken. This is his first visit to India since taking office in February last year. The visiting dignitary will deliver a keynote address at a Confederation of Indian Industry business event in the context of the India-EU Free Trade Agreement. Our correspondent reports that the visit will provide an opportunity to further strengthen the India-Belgium partnership in advanced cooperation in areas of mutual interest, including trade and investment, defence and security, and renewable energy. Earlier today, Defence Minister Rajnath Singh held a delegation-level talk with his Belgian counterpart Theo Franken. He said India and Belgium have warm and enduring ties built on mutual respect, democratic values, and a shared commitment to a rules-based global order.
2: India and Belgium share warm and long-standing relations founded on mutual respect, democratic values, and a shared commitment to rules-based global order. The recently held India-Belgium Strategic Dialogue in July 2026 has provided an institutional framework for taking up our bilateral partnership forward, including in defense and security. Excellency, we see considerable potential for expanding our bilateral defense cooperation, and we welcome greater cooperation among Belgian and Indian defense companies.
1: The Belgian Defence Minister called India a high-technology country and emphasised on the need for Belgium to collaborate on future projects. He also underlined on taking India-Belgium friendship forward. Finance Minister Nirmala Sitharaman has pitched India's reform-led growth story to investors at a high-level business roundtable in New York. Highlighting India's 7.8% economic growth in the first quarter of 2026-27 and the improved investment climate, Ms. Sitharaman said India continues to be the world's fastest-growing major economy despite global disruptions and challenges. The finance minister said reforms including the Insolvency and Bankruptcy Code have provided greater regulatory certainty, eased compliance and reduced paperwork under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Ms. Sitharaman reiterated India's commitment to fiscal prudence and discipline amid continuing global economic challenges since the onset of the COVID-19 pandemic. India and France have strengthened cooperation in the textile and fashion sectors, with new agreements signed in Paris to promote Indian textiles and craftsmanship in global markets. The Bharat Text Trade Federation and Premier Vision Societe Anonyme exchanged an MOU in the presence of Secretary in the Ministry of Textiles, Neelam Shami Rao. In a social media post, the Textiles Ministry said the MOU will strengthen cooperation in exhibitions, market linkages, sustainable sourcing and knowledge exchange. Back home, Union Minister for Education Prahlad Joshi held a meeting with the Secretary, Department of School Education and Literacy in New Delhi to discuss the next phase of school education reforms. In a social media post yesterday, Mr. Joshi said the discussions focused on strengthening the foundations of learning, promoting innovation in classrooms, and ensuring that the education system keeps pace with the aspirations of a young and dynamic India. The Union Minister also held a meeting with the Secretary, Department of Higher Education, to review the preparedness for the future examinations scheduled in the upcoming months. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at 11 premises in Kolkata, West Bengal, in connection with a 290 crore rupee bank fraud involving Kohinoor Power Private Limited. According to ED officials, the company had availed loans from banks for setting up a 66 megawatt power plant in Jharkhand, which siphoned off to other group entities and diverted for personal purposes. In badminton, Kidambi Srikanth stunned world number 9 Victor Lai of Canada in straight games to enter the men's singles quarterfinals of the China Masters. And with that, we end this news bulletin.

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: आरती श्रीवास्तव का
1: प्यार भरा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो आरती?
2: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल
1: वो तो लग रहा है
2: जी।
1: आज क्या खाया था तुमने नाश्ते में?
2: नाश्ते में मैंने खाया है बढ़िया सा पोहा।
1: पोहा? और लंच में?
2: लंच में खाया है मैंने रोटी,

0: सब्जी, दाल, चावल, सभी कुछ खाया और साथ में दही।
1: और सलाद खाया कि नहीं खाया?
0: वो तो जरूरी है, सलाद के बिना तो मजा नहीं आता खाने का।
1: और जब हम नाश्ता करते हैं तो अंकुरित भोजन भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि
0: हाँ
1: अच्छा पोषण जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ ना कि अपने पोहे में थोड़ी सी अंकुरित मूंग की दाल है ना, और या कुछ इस तरीके की चीजें, अंकुरित जो होते हैं, चने होते हैं, वो कुछ मिक्स करके अच्छे से
1: हाँ
0: एक नई तरीके की रेसिपी बना लेती हूँ। उसमें टमाटर वगैरह डाल के काट के
1: हाँ
0: बहुत अच्छा सा बन जाता है, और
1: क्या बात
0: खाने
1: है।
0: में स्वाद होता ही है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है।
1: सबसे बड़ी बात है कि हमें जो भी खाना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होना चाहिए। और इन दिनों हम पोषण सप्ताह मना भी तो रहे हैं, और
0: हाँ
1: देखिए कहते हैं कि अगर बचपन में हमने पौष्टिक भोजन कर लिया है तो ताउम्र हम स्वस्थ रह सकते
0: बिल्कुल।
1: हैं, है
0: वो
1: ना।
0: ग्लो जो होता है ना, वो
1: हाँ
0: हमें बाहर से लाने की जरूरत
1: नहीं
0: नहीं
1: होती है
0: पड़ती
1: कि हम बड़े ब्रांड के पाउडर,
0: है।
1: क्रीम, काजल ढूंढते हैं बाहर जा जाके, खासतौर से महिलाएं। और जब हम मेकअप से जो है लिपा पुता चेहरा लेकर बाहर निकल तो जाती है, लेकिन असलियत
0: जी
1: तो सामने आ ही जाती है ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल
1: आपके भीतर जो चल रहा है वो सामने आ जाता है आपके चेहरे पर। अगर आप
0: बिल्कुल
1: भीतर से कमजोर हैं तो वो आपका चेहरा बता देता
0: बिल्कुल
1: है।
0: बता देता है कि कहाँ आपको किस चीज की कमी हो रखी है।
1: हाँ, आपको सही भोजन मिलना चाहिए, सही पोषण से हमें ऊर्जा मिलती है और बीमारियों से लड़ने की एक शक्ति मिलती है।
0: बिल्कुल, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो एकदम सही बना रहता है,
1: हाँ
0: तो जो बीमारियां हैं वो जल्दी हमें इफेक्ट नहीं करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब बात चली कि बचपन में हमें अच्छा भोजन अगर मिल जाए तो उसकी बात ही अलग है, तो हम अपने खासतौर से सखियों से कहना चाहेंगे कि हम पूरा दिन घर की साफ सफाई, घर को सुंदर चमकाने में, कार को चमकाने में, स्कूटी चमकाने में, टीवी को चमकाने में लगा देते हैं, या फिर कई बार खुद को भी चमकाने में लगा देते हैं,
0: जी
1: है ना। लेकिन जो हमारे भीतर का जो है ना तत्व, उसे हम नहीं संभालते हैं। तो अच्छा भोजन करें, अच्छा पोषण लें, और खास तौर से दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे जरूरी बात है कि समय पर उचित और स्वच्छ भोजन ग्रहण करें,
0: बिल्कुल
1: अपने घर वालों को भी खिलाएं, खास तौर से अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो और भी हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान देना चाहिए।
0: जी, क्योंकि ना जब हम खुद देख सकते हैं ना कि अगर हम संतुलित भोजन की बजाय कुछ बाहर या जंक, मतलब बहुत इस तरह
1: जंक
0: की
1: फूड
0: बाहर की जो
1: खाते
0: चीजें हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है ना, और जब हम घर की सिर्फ बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं तो फर्क साफ नजर आता है,
1: हाँ
0: एकदम पीला पड़ा सा चेहरा, या हमारा वेट बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल
0: जबकि घर की चीजों को हम अगर खा रहे होते हैं, संतुलित भोजन खा रहे होते हैं ना, तो हमें बाकी चीजों से छुटकारा मिल जाता है।
1: और सबसे बड़ी बात, जो बीमारियां आजकल चल रही है ना, वो इसी कारण है कि हम जंक फूड पर बहुत विश्वास करने लगे हैं, डिब्बा बंद खाना देखने लग गए
0: बिल्कुल
1: हैं, 2 मिनट जो खाना बनने लग
0: हाँ
1: गया है उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे। देखिए रिजल्ट सामने है, हम लोग बीमार रहते हैं, इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, तो ये सभी कारण है। तो इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहेंगे कि अच्छा खाएं, अच्छा बनाएं, अच्छा पकाएं, और
0: बिल्कुल
1: अपने बच्चों को, घर परिवार वालों को अच्छा पोषण भी दें।
0: बिल्कुल
1: तो आज के विषय क्या है ये भी लगे हाथों बता दें, तो उसके बाद एक प्यारा सा गीत हम पेश करते हैं।
0: हाँ, आज हम विषय भी लेकर आए, क्योंकि पोषण सप्ताह चल रहा है, तो वृद्धावस्था और पोषण की, जब हम एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त हमारा भोजन कैसा होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: तो उस पर हम चर्चा करेंगे।
1: बहुत
0: तो आप
1: जरूरी
0: भी अपने
1: बातचीत।
0: सुझाव
1: हाँ
0: भेजिए, और साथ ही कहानी पद्मश्री के अंतर्गत हम बात करेंगे आज निदुमोलु सुमति, जो कि कला क्षेत्र में है, और मुझे कुछ कहना में आज बहुत मजेदार बात होने वाली है,
1: क्या?
0: वो है बचपन के मजेदार अंधविश्वास। वही ना, कि आपने ये बीज खा लिया, अब तो बस पेड़ निकलेगा, क्योंकि पानी तो हम पी ही रहे हैं, तो पानी की जरूरत पड़ती है, तो अब ये बीज
1: पेड़
0: पेड़
1: बनकर पेट में
0: निकलेगा।
1: निकलेगा।
0: हाँ,
1: और हम सच्ची मान भी
0: मान
1: ले लेते,
0: लेते
1: डर भी जाते थे, या दांत टूट जाता तो कहते अरे चूहा ले गया इसका दांत,
0: हाँ,
1: कहाँ
0: अब
1: ले
0: क्या।
1: गया, है ना। तो हम दांत को तोड़ के गड्ढा खोद के अंदर डाल देते थे,
0: हाँ
1: एक अंधविश्वास की है ना, हमारा
0: बिल्कुल
1: दांत कोई ले न जाए चूहा।
0: बिल्कुल
1: तो आपके जीवन में भी इस तरह की बातें हुई होंगी जहां आपको इस तरह से बताया होगा कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या
0: या
1: अपने
0: आप
1: बच्चों
0: बताते
1: करते
0: हैं
1: हैं
0: ऐसा
1: अपने बच्चों को, है ना।
0: जी, तो बताइए हमें,
1: हाँ
0: और साथ ही हम बात करेंगे कुछ अच्छे टिप्स के बारे में, जो कि रसोई को चमकाने में सहायक हो सकते हैं।
1: रसोई को चमकाने में मतलब
0: मतलब हमारी रसोई चमकती रहे ना, एकदम बढ़िया रहे, एकदम साफ सुथरी रहे, उसके
1: हाँ
0: लिए क्या टिप्स हो सकते हैं,
1: हाँ
0: उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं।
1: बिल्कुल, कैसे आप अपनी रसोई को साफ सुथरा रख
0: तो आप
1: सकते
0: हमें
1: हैं।
0: अपने सुझाव भेजिए, आप क्या करते हैं अपनी
1: बिल्कुल
0: रसोई को चमकाने के लिए।
1: रसोई को गंदा तो नहीं रखते हैं, है ना।
0: हाँ
1: आजकल इस पर भी काफी चर्चा हो रही है कि खाद्य
0: बिल्कुल
1: पदार्थों में जो मिलावट, जो गंदगी या अस्वच्छता का जो माहौल है, उस पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। तो आप अपने
0: बिल्कुल
1: घर की रसोई को कितना साफ सुथरा रखती हैं ये हमें बता सकती हैं, ठीक है।
0: बिल्कुल
1: और अब हम क्या कर सकते हैं।
0: एक गीत सुन सकते हैं।

0: बहुत सुंदर गीत हमने सुनवाए हैं अपने श्रोताओं को आरती
1: जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत था।
0: हाँ, और संगीत भी कहते हैं कि वैसा ही काम करता है जैसा कि आपके जीवन में
1: बिल्कुल खाना हो या दवाई हो क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए आज मैं बात बात में आपको कह रही होगी ना खाने की बात।
0: हाँ, खाना बहुत याद आ रहा है आज और मुझे तुम्हारा पोहा भी याद आ रहा है जिसमें तुम दुनिया भर की अंकुर दालें डाल के खा जाती हो चुपचाप से, है ना? और वो राज तुमने आज खुला है हमारी
1: किसी दिन बना के लाऊंगी आपके लिए।
0: चलिए देखते हैं। तो बात चल रही थी पोषण की, पोषण सप्ताह भी चल रहा है और पोषण पर हम कितना ध्यान दे पाते हैं अपने जीवन में। अभी हमने कहा कि घर के जो, वैसे तो सभी सदस्यों को अच्छा पोषण देना चाहिए, लेकिन खास तौर से जो नवजात शिशु हैं या बच्चे हैं, बढ़ते हुए बच्चे हैं, और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पोषण कैसा हो, आज विशेष रूप से हम वृद्धावस्था और पोषण पर बातचीत करना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल। तो जहाँ अनुभवों की एक दौलत होती है ना, वो कौन सी उम्र होती है ना, वो एक जो उम्र हम वहां पहुंच जाते हैं ना, तो अनुभवों की उम्र होती है, उसको वृद्धावस्था कहते हैं। तो कहा जाता है कि उम्र का बढ़ना जीवन की एक प्रक्रिया है, लेकिन स्वस्थ रहना हमारी सजगता और सावधानी का परिणाम होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो शरीर में कई सारे प्राकृतिक परिवर्तन भी आने लगते हैं, क्योंकि जो आते ही हैं हमेशा, तो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता भी बदल सकती है और मांसपेशियों की ताकत भी कम हो सकती है और पाचन और भूख में भी बदलाव महसूस हो सकता है। इसलिए इस उम्र में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आरती कि संतुलित और जो पौष्टिक आहार है वो हमारे बुजुर्गों को सक्रिय रहने और शरीर की ताकत बनाए रखने और दैनिक जीवन को बेहतर ढंग से जीने में मदद भी करता है। और इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भोजन में क्या शामिल हो। जैसे शरीर की मांसपेशियों और ताकत के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है, तो जब गृहिणी भोजन बनाए तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे घर के भोजन में दालें हो, दूध हो, दही हो, पनीर हो, और जो नॉनवेज खाते हैं, मान लीजिए अंडा खाने का भी आप

0: आदत हो अंडा खाना, तो आप इसको भी हिस्सा बना सकते हैं। और इसके अलावा फल है, सब्जियां हैं अच्छी मात्रा में, आप खा सकते हैं रंग बिरंगे फल सब्जियां। ये जो है भोजन को पौष्टिक बनाते हैं और इनमें कई पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे घर के वृद्ध हों वो नानुकुर भी करते हैं कि
1: बहुत
0: मुझे ये
1: ज्यादा
0: पसंद नहीं है, ये मैं नहीं
1: जी
0: खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं है, उन्हें समझाना है कि साबुत अनाज और रेशेदार भोजन वृद्धावस्था में आपके पाचन को बेहतर बनाता है और इसमें जो हड्डियों का आपका जो स्वास्थ्य है वो भी खास अच्छा हो जाता है। दूध
1: बिल्कुल
0: है, दही है, ये खाद्य पदार्थ आहार का हिस्सा बनाए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल। और किसी विशेष जो कोई विशेष जो पोषक तत्व होता है कि उसकी आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के हिसाब से अलग अलग होती है।
0: हाँ
1: किसी के अंदर किसी की चीज की कमी हो सकती है, किसी के अंदर किसी चीज की कमी हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए डॉक्टर या योग्य पोषण विशेषज्ञ की सलाह लेना भी बहुत जरूरी होता है कि क्या हम खाएं कि वो उससे उसके जरिए हमारी जो पोषण आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो इसके साथ अक्सर ये भी देखते हैं कि बुजुर्ग जो है वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी भूल जाते हैं और शरीर को तरल पदार्थों की आवश्यकता होती ही है। इसलिए दिन भर उचित मात्रा में पानी और अन्य स्वास्थ्य के जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे कि जूस हो गया, तरह तरह के फलों के, तो वो लेना भी बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य बेहतर बनाकर कहते हैं कि उम्र को भी आप मात दे सकते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना। कई बार हम देखते हैं ना, कुछ लोग बड़ी उम्र के होते हैं लेकिन कहते
1: पता ही
0: हैं
1: नहीं चलता है
0: पता ही नहीं चलता है। एक एड भी आया
1: जी।
0: करता था, है
1: हाँ
0: ना, इतने साल के बुजुर्ग या जवान, तो
1: हाँ
0: मतलब लगता था कि अरे इतने बुजुर्ग आदमी भी जवान की तरह दौड़ते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो ये आप अपने भोजन पर ध्यान रखकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: संतुलित भोजन ले, भोजन बिल्कुल ताजा और साफ सुथरा होना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक नमक है, कई बार ऊपर से नमक डालने की जो
1: हाँ
0: हमारी गंदी आदत है ना,
1: बहुत ज्यादा
0: उससे हमें बचना चाहिए। बहुत मीठी चाय चीनी डालकर हम
1: एकदम
0: पीते
1: कुछ लोग
0: हैं,
1: एकदम
0: शरबत पी रहे हैं जैसे,
1: शरबत
0: है ना, वो कैसे
1: जी
0: पीते हैं पता नहीं। और अत्यधिक जो तले भुने खाद्य पदार्थ हैं उनका भी सेवन हर बार नहीं करना चाहिए, कभी
1: बिल्कुल
0: कभार
1: बिल्कुल
0: आपकी इच्छा हो गई एक अलग बात है।
1: और इसके साथ साथ भोजन को व्यक्ति की चबाने और पाचन की क्षमता के अनुसार ही तैयार करना जरूरी है।
0: हाँ
1: जो भी भोजन बना रहा है ना, या आप खुद भी बना रहे हैं तो अपने हिसाब से उस हिसाब से आप भोजन को बनाएं। जैसे कि दांतों की समस्या होने पर नरम और पौष्टिक भोजन को ही चुनना चाहिए और
0: बिल्कुल
1: भोजन का समय नियमित रखने की बहुत कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भोजन का अनुशासन जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: हाँ
1: ये बहुत
0: बिल्कुल। आप
1: जरूरी है
0: अगर एक समय निश्चित कर लेते हैं तो शरीर उसी हिसाब से
1: बिल्कुल
0: आपको रिप्रेजेंट भी करता है कि किस तरह से शरीर वो आपको संकेत दे देता है कि भोजन का वक्त हो गया, भोजन कर लेना
1: बिल्कुल आपके
0: चाहिए,
1: पेट में गुड़गुड़ होने
0: होने लग जाती
1: लगेगी
0: है। और कई बार पता है हम देर कर देते हैं
1: हाँ
0: तो फिर कई और दूसरे सिम्टम्स हमें परेशान करते हैं ना। कई लोग
1: बिल्कुल
0: कहते हैं ना कि समय पर खाना नहीं मिलेगा तो हमें एसिडिटी हो
1: हाँ, या
0: जाएगी,
1: सिर में दर्द हो
0: सिर में
1: जाएगा।
0: दर्द हो जाएगा। तो समय समय पर आप भोजन लें और साथ में ये भी ध्यान रखें कि अच्छे भोजन के साथ हल्की शारीरिक जो एक्सरसाइज है, वो गतिविधि है जिसे हम कहते हैं, वो भी आप करते रहें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से।
1: बिल्कुल
0: टहले, है ना, दिनचर्या का आपकी हिस्सा होना चाहिए टहलना। हाँ, किसी नई व्यायाम योजना को शुरू करने से
1: बिल्कुल
0: पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
1: बिल्कुल और वृद्धावस्था कमजोरी का नहीं बल्कि अनुभव, समझ और जीवन की उपलब्धियों का समय होता है। सही पोषण, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त पानी, उचित गतिविधि और परिवार का स्नेह, ये सभी मिलकर जीवन को अधिक स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं। इसलिए याद रखिए कि स्वस्थ भोजन शरीर को शक्ति देता है और अपनों का प्यार जीवन में ऊर्जा भर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात जो अभी आपने कही ना कि दांतों की जो समस्या एक उम्र के बाद शुरू हो जाती है, तो जो घर में खाना बनाने वाली हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से अपने घर के बुजुर्गों को वो खाना दें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने खाना तो रख दिया
1: जी
0: लेकिन उन्हें चबाने में बहुत टाइम लग जा रहा है।
1: हाँ
0: कई बुजुर्ग हमने देखे घंटों खाते हैं उस खाने को,
1: बिल्कुल
0: ठंडा हो जाता है खाना, बेस्वाद हो जाता है क्योंकि
1: बिल्कुल
0: वो चबा
1: जब
0: नहीं
1: नहीं
0: पाते
1: चबा
0: हैं।
1: नहीं पाते
0: तो ऐसे समय में आप ध्यान रखिए, उसको रोटी है तो चूर के दें, चावल है, दाल चावल है, दलिया है, खिचड़ी है, ऐसा दें ताकि जो बुजुर्ग है वो उसे आराम से खा सके।
1: बिल्कुल और
0: आपने
1: थोड़ी सी
0: खाना
1: रोटी
0: तो बना
1: अगर
0: के रख
1: बिल्कुल
0: दिया,
1: और गर्म रहेगी रोटी तो वो कड़ी नहीं होगी।
0: कड़ी नहीं होगी, आपने फटाफट रख दिया कि मैंने तो अपना खाना पूरा दे दिया है, अभी खाएंगे। जब भी वो खाते खाते खाते खाते घंटों बीत जाते हैं क्योंकि उनके दांत काम नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है।
1: जी
0: और सबसे बड़ी बात है, जैसे कि प्रोटीन युक्त जो दूध है, दही है, पनीर है, दालें हैं, अंकुरित है, अनाज जो है, अंडा है, आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां हैं, फल हैं, विटामिन और मिनरल्स के लिए आप ये ले। साबुत अनाज जैसा कि रोटी खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, ओट्स का दलिया आप खिला सकते हैं। पानी तो आपने भी बताया कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समय समय पर बुजुर्गों को याद दिलाते रहें। और कैल्शियम और विटामिन डी ये भी जरूरी जरूरी है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए। और कम नमक की बात आपने

0: बताई, और सबसे बड़ी बात कम चीनी, और हो सकता है तो चीनी छोड़ ही देना एक समय बाद, क्या जरूरत है चाय में चीनी डालने की या बहुत ज्यादा मीठा खाने की, क्योंकि आपका जो ब्लड प्रेशर है और आपकी जो शुगर है वो नियंत्रित रहेगी। तो जो बुजुर्ग हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आसानी से पचने वाला संतुलित भोजन उन्हें करवाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर सकते ना अगर ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं तो। घर में जो भी गृहिणी है या बाल बच्चे हैं वो ध्यान रखें घर के बुजुर्गों का, और समय समय पर उन्हें गर्म भोजन दें और स्वच्छ भोजन दें।
1: बिल्कुल, और इसी बात को लेकर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा भी हमें लिखकर। तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि वृद्धावस्था में सुपाच्य स्वास्थ्य वर्धक भोजन करना चाहिए, फल और सब्जी अधिक खाने चाहिए, तले भुने भारी भोजन नहीं करने चाहिए, सूखे मेवे कद्दू के बीज रात भर पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में लेने चाहिए।
0: और क्या लिखा है, कुछ और भी लिखा है?
1: हाँ बिल्कुल, लिखा है कि मैंने आज अंकुरित, हाँ उन्होंने अपना खुद का लिखा है कि मैंने आज अंकुरित मूंग और चने को पीसकर उसके चीले बनाए, बहुत बढ़िया। फिर तो ऐसे भी सीनियर्स को अंकुरित अनाज थोड़ा उबाल कर खाना चाहिए, उसमें कुछ भुने हुए सीड्स दो होते हैं और हल्के से चाट मसाला या नींबू का प्रयोग करें। प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ रसेदार जो सिट्रस जो फल होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं, तो उनको आप उनका सेवन करें। तो इन्होंने इतना अच्छा आज चीला बनाया भाई,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल हमें प्रयोग करते रहने चाहिए ताकि घर के बुजुर्ग स्वस्थ रहे और दूसरे जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके लिए भी आप बनाए, है ना। चूंकि बात वृद्धावस्था की चल रही है इसलिए उनको खास ध्यान दिया जा रहा है कि वृद्धावस्था में पोषण का कितना बड़ा योगदान है। एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था और पोषण बहुत बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। बूढ़ा होने पर भूख और ऊर्जा कम होने लगती है, इसलिए कुछ नया खाने की इच्छा होती है। इस सब्जेक्ट से पहले कविता सुनाना चाहता हूं, वो यारों की हंसी ठिठोलियां, वहां नेताजी का बुत लग गया, देखो विकास सब चर गया, चौमासे बरसाती नदी वहां बन गया, नदी अब बन गई नाला, नाले भी हो गया गड़बड़ झाला। कुछ कविता लिखने की कोशिश की है और लिखते हैं कि हमारे दादी के घर वहाँ सब्जी रोटी और घी साथ होता है, मतलब कि घी से सनी रोटी हम खाते हैं सब्जी के साथ।
1: अच्छा, ये भी अच्छी चीज है, घी खाना ही चाहिए। सोचते हैं लोग कि ना घी खाने से मोटे हो जाएंगे, नहीं, आप घी खाइए, उससे आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं।
0: हाँ, लेकिन घी हरे, वही बात होती है कि आपका शरीर क्या कहता है। अपने शरीर के संकेतों को ध्यान में रखिए कि घी पचता भी है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल, हल्का फुल्का ही खाए, बहुत ज्यादा नहीं
0: हिसाब से। और एक श्रोता लिखते हैं कि वृद्धावस्था जीवन का वो चरण है जब व्यक्ति उम्र के अंतिम पड़ाव में प्रवेश करता है। इस अवस्था में बुजुर्गों को परिवार के प्यार, सम्मान, देखभाल और सहयोग की आवश्यकता होती है। उनका अनुभव और जीवन की सीख समाज के लिए बहुत मूल्यवान होती है। हमें हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जरूरतों का ध्यान भी रखना चाहिए। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये उम्र ही ऐसी होती है जब व्यक्ति को पर्याप्त पोषण की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि उनके खाने में सभी प्रकार की दालें, चावल, प्रोटीन से युक्त चीजें और कैल्शियम की कमी उनको न होने पाए, इसके लिए दूध वगैरह ये सब जरूर शामिल करें उनके खानों में। और ध्यान रहे कि उन्हें ऐसी चीज दें जो उनको सूट करती हो। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि इस उम्र में कुछ भी खिला देना बुजुर्गों को सूट नहीं करता है, इसलिए कोई भी ऐसा खाना न दे जो उनके सेहत से खिलवाड़ करे।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि कुछ अच्छा, कुछ टेस्टी वैरायटी खाना हफ्ते में एक बार ठीक रहता है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ दूध, फल, फ्रूट खाना अच्छा होता है। नमक और चीनी फ्रूट वाले दिन परहेज करनी चाहिए, और मैंने करके देखा है तो लग रहा है कि ये सेहत के लिए ठीक है। सेहत ठीक रहे तो दुनिया अच्छी लगती रहेगी, बचपन के मजे, ये सब बातें इन्होंने लिखी है।
0: ये बात तो सही कहा इन्होंने, अगर सेहत ठीक है ना आरती,
1: सब कुछ अच्छा
0: तो
1: लगता है,
0: सब कुछ अच्छा लगता है। अगर सेहत सही नहीं होती ना तो सब कुछ अच्छा होते हुए भी सब बेकार लगता है।
1: बिल्कुल, और अभी एक गीत सुने तो और अच्छा लगेगा,
0: हमारी सेहत और अच्छी हो जाएगी।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, जब हम स्वस्थ होते हैं ना तो ऐसा ही लगता है ये जमी गा रही होती है, आसमान गा रहा होता
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: हर जगह संगीत
0: सुनाई देता है। बिल्कुल सही कहा।
1: और आज हम बात करने जा रहे हैं किनकी, नीदुमोलु सुमति की, जो कि कला क्षेत्र में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बनाई है। तो पद्मश्री के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं इनकी। तो आज हम बात कर रहे हैं नीदुमोलु सुमति की, जिन्हें दंडामुड़ी सुमति के नाम से भी जाना जाता है। भारत की प्रसिद्ध मृदंगम वादिका और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की वो बहुत बड़ी कलाकार
0: है।
1: और वो भारत की शुरुआती महिला मृदंगम वादकों में गिनी जाती हैं।
0: क्या बात है।
1: और लय विन्यास की पहली महिला कलाकार के रूप में भी उनका उल्लेख है। और इनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1950 को आंध्र प्रदेश के एलुरु में।
0: सबसे बड़ी बात, और देखिए ना, मृदंग बजाना, अरे

0: बड़ा मुश्किल काम है,
1: ज्यादातर
0: हमने पुरुषों को ही देखा है, है ना। लेकिन महिलाओं ने भी बहुत जगह अपने जो है कदम रख दिए,
1: बहुत ताकत लगती है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कैसे मृदंग बजाते
0: हैं, गजब गजब। तो जब निधु मोलू सुमति को हम सुनते हैं तो सुनते ही रह जाते हैं। और पता चला कि इनके जो माता पिता है निधु मोलू राघवैया और निधु मोलू वेंकट रत्नम्मा इनके माता पिता हैं, और उनके पिता स्वयं मृदंगम के विद्वान थे। उन्होंने सुमति की संगीत प्रतिभा को बचपन से प्रोत्साहित किया।

0: का भी मौका मिला।
1: बिल्कुल, और लगभग 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सुमति ने मृदंगम में प्रमाण पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी पूरा किया और 1964 के बाद उन्होंने प्रसिद्ध मृदंगम कलाकार दंडामुड़ी राममोहन राव से प्रशिक्षण लिया और राममोहन राव आगे चलकर उनके गुरु के साथ साथ उनके जीवन साथी भी बने। अपने गुरु से उन्होंने मृदंगम की जटिल तकनीकों, लय, ताल और प्रस्तुति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरीके से सीखा।
0: बिल्कुल सही कहा, और लगातार जब अभ्यास के कारण वे धीरे धीरे संगत कलाकार से स्वतंत्र और एकल प्रस्तोता के रूप में स्थापित हो गई। निदुमोलु सुमति की यात्रा जो है केवल एक सफल संगीतकार की कहानी मात्र नहीं है आरती, उन्होंने ऐसे समय में मृदंगम को पेशेवर के रूप में अपनाया जब इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने निरंतर अभ्यास, अनुशासन और प्रतिभा के बल पर यह साबित किया कि कला में सफलता का आधार साधना, समर्पण और योग्यता है।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों ने मृदंगम जैसे पारंपरिक वाद्य के प्रति नई पीढ़ी की रुचि बढ़ाने और महिला कलाकारों के लिए रास्ते खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मृदंगम पारंपरिक रूप से पुरुष कलाकारों का प्रमुख क्षेत्र माना जाता रहा है। ऐसे वातावरण में भी सुमति ने अपने प्रतिभा और निरंतर साधना से अलग पहचान बनाई। उनके वादन में ताल की सटीकता, लय की जटिलता और प्रस्तुति का संतुलन विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा।
0: बिल्कुल सही कहा, और अपने लंबे संगीत जीवन में सुमति ने अनेक प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय संगीत कलाकारों के साथ मृदंगम पर संगत भी की, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, महान गायिका सुब्बुलक्ष्मी, डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्ण, जोशी, चिट्टी बाबू, एन रमणी और यू श्रीनिवास जैसे प्रमुख नाम जो है हम शामिल करते हैं, और इससे उन्हें देश के प्रमुख संगीत मंचों पर अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर मिला। साथ ही मृदंगम वादन से उनकी प्रतिष्ठा जो है वो भी बहुत ही मजबूत हुई।
1: बिल्कुल, और मंदाकिनी जी अभी हम लोग का समय हो रहा है एक अंतराल का,
0: और ले दी एक अंतराल
1: बिल्कुल बात।

0: इस अंतराल के बाद सभी हमारी सखियों और सखाओं का स्वागत है। तो बात चल रही थी मृदंगम की।
1: बिल्कुल, और हम बात कर रहे थे सुमति जी की, जो मतलब उनके मृदंग को सुनकर ना ऐसा लगता है कि सारे दिमाग के पूरे शरीर के तार एकदम झनझना उठे।
0: मैं तो पता है उनके बारे में बात करते करते खो भी गई हूँ। मुझे लग रहा है कि उन्हें सामने मृदंग बजाते हुए देख रही हूँ। इतना मतलब गहरा उनका अभ्यास जब देखा और पढ़ा तो लगता है कि कितना कलाकार खुद को मांझता है, तब जाकर वो एक अच्छा
1: एक तपस्या ही तो है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुमति ने वर्ष 2000 में लय वेदिका नामक संस्था की स्थापना की। उनकी इस संस्था का उद्देश्य मृदंगम और ताल प्रधान संगीत को प्रोत्साहित करना था। संस्था के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताएं और संगीत संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतिभाशाली कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। इस पहल से उनकी भूमिका भारतीय ताल परंपरा के संरक्षण और नई पीढ़ी को प्रेरित करने वाली मार्गदर्शक की बन गई।
0: बिल्कुल। और वर्ष 2015 में सुमति ने सता मृदंगा वाद्य निवाली नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें लगभग 100 मृदंगम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी। उनके गुरु और जीवन साथी दड़ामुड़ी राममोहन राव को श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम उनके संगीत जीवन की उल्लेखनीय पहलों में गिना जाता है। सुमति को उनकी कला के लिए कई सम्मानजनक उपाधियों से भी संबोधित किया गया है।
1: बिल्कुल, उनकी उपाधियों की बात करें तो मृदंग शिरोमणि, मृदंग महारानी, नाद भागीरथ, मृदंगालय विद्यासागर, मृदंग विन्यास, कला भारती और नादलय साम्रागी जैसी उपाधियां शामिल हैं। निदुमोलु सुमति को उनके लंबे संगीत सफर में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें मद्रास म्यूजिक एकेडमी का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, पालानी सुब्रमण्य पिल्ले

0: मेमोरियल पुरस्कार उनको मिला और बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं।
1: बिल्कुल, और इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई का बेस्ट मृदंगिस्ट अवार्ड, बेस्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, उगादी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार का, पालानी सुब्रमणिया पिल्लई मेमोरियल अवार्ड, और वर्ष 2021 में भारत सरकार ने निदुमोलु सुमति को पद्मश्री से सम्मानित भी किया।
0: वो है भी इतने सारे इन पुरस्कारों के को बहुत ज्यादा उनके मिलने भी चाहिए, इतना उनका जो पूरा व्यक्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व प्रेरणादायक है।
1: बिल्कुल, ऐसी महान कलाकार को हम सैल्यूट करते हैं।
0: बिल्कुल।

0: संगीत ने जो है झूमने पर मजबूर कर दिया।
1: बहुत प्यारा गीत
0: है ना।
1: और हाँ। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं अपने बचपन की तरफ, थोड़ा सा जाने वाले हैं, है ना। और हमें
0: बचपन की तरफ जाने वाले हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हुआ तब से हम बचपन की तरफ ही थे।
1: सही बात है। और हमारे जो सखी हैं, जो सखाए सब अपने अपने किस्से लिख के भेज रहे हैं, बता रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उनको भी ये अंधविश्वास थे बचपन में।
0: हाँ, हाँ।
1: जो हमें, सिर्फ हमें नहीं थे,
0: उन्हें भी थे। लेकिन ये बात भी पक्की कि बचपन में हमें नहीं पता होता कि अंधविश्वास है, हमें बताया जाता है अरे ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा।
1: सच में वो डर रहता है।
0: हाँ, तो अंकित हो जाते थे उस बाल मन पे ना, अरे ऐसा नहीं करते। फिर बड़ों के हम भी वही बात आगे कहते रहे। तो ये बचपन में हमें जिस तरह से समझाया गया, डराया गया, सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो हम बचपन में समझते थे सचमुच गब्बर सिंह आने वाला है।
1: हाँ बिल्कुल, कोई ना कोई आगे पकड़ लेगा अगर सोए नहीं तो।
0: तो सब चीजें हमें बताई जाती थी, कही जाती थी, जिसे हमारे मन में हम अंकित कर लेते थे, बाल मन था हमारा। तो वो अब जब बड़े हो गए हैं तो हमें हंसी आती है कि अरे हम कैसे किया करते थे। तो क्या लिखते हैं श्रोता?
1: तो एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि बचपन में ऐसा था कि बहुत भोला बहुत होता है बचपन, किसी भी बात पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। जब हम भाई बहन छोटे थे तो थूजा के पेड़ की पत्तियों को, जिसे हम लोग विद्या का पेड़ भी कहते थे, अपनी किताब में रख लेते थे, क्योंकि उससे विद्या आ जाती है, ऐसा हम लोगों को अंधविश्वास था। और जिस विषय में ज्यादा डर लगता था उसमें खूब सारी पत्तियां रख लेते थे कि अब कितनी विद्या है ये तो पता नहीं, मतलब पत्तियां रख लेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे,
0: पढ़ाई नहीं करके भी हम
1: विद्या आ जाएगी हमारे अंदर।
0: हर पेज के अंदर मोर पंख भी हम रखा करते थे बचपन में। सहेलियां देखती थी किसकी किताब में कितने मोर पंख हैं, कॉपियों में कितने मोर पंख हैं ना। और कई बार पेड़ जो पत्तियां हैं वो भी हम रखा करते थे, कई बार शौकिया भी रखते थे। किसी पेड़ की जो पत्ती हमें पसंद होती थी ना, उसका कलेक्शन करके भी हम लोग अपनी नोटबुक में
1: जब पीली पड़ जाती थी उसको अच्छा लगता था देखने में।
0: तो ये ऐसा भी होता था। और एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की वो दुनिया जहां न मोबाइल था, न इंटरनेट की चिंता थी, न सोशल मीडिया का दबाव था, बस शरारती थी, खेलकूद, दादी नानी की कहानी और उनके बताए कुछ ऐसे नियम जिन्हें हम बिना कोई सवाल किए सच मान लेते थे। याद है बचपन में अगर कोई कहता था कि रात में नाखून मत काटो तो हम तुरंत नाखून काटना बंद कर देते थे। कोई पूछता क्यों तो जवाब मिलता बस मत काटो, अच्छा नहीं होता। अब हमें ये जानने की फुर्सत ही कहां कि अच्छा क्यों नहीं होता, बड़ों ने मना किया है, मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी बात है।
1: और एक हमारे श्रोता है लिखते हैं कि फल जो होता है उसका बीज अगर निकल जाओगे तो पेट में पेड़ उग जाएगा।
0: हाँ
1: है ना? ऐसा होता था ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और श्रोता लिखते हैं कि अगर आंख फड़क जाए तो जो है घर में कोई भविष्यवाणी शुरू हो जाती थी कि कुछ अच्छा होने वाला है, नहीं नहीं कुछ खबर आने वाली है, भाई दाई आंख फड़की कि बाई आंख फड़की,
1: ये जरूर पूछा जाता था कि आंख कौन सी फड़की।
0: हम डर के मारे पता है क्या करते थे, उसके ऊपर कागज काट के छोटा सा आंख पर चिपका लेते थे, हमें ऐसा कहा जाता था। और झाड़ू पर पैर मत रखो की बहुत सारी बातें हमें कही जाती थी, लेकिन हमने कभी पूछा नहीं क्यों, बस हमने उसको सत्य मान लिया।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे समाज जो परिवार में ये प्रथा रही कि किसी बच्चे का दांत टूट जाता था तो हमें ये सिखाया जाता था कि दांत टूटने पर उस दांत को चांद के सामने ये प्रार्थना करनी होती थी कि हे चांद बाबा मैं तुझे पुराना दांत दूं और तू मुझे नया दांत दे, इस तरह से कहना होता था। और ऐसा विश्वास था कि दांत चांद बाबा कुछ दिनों बाद हमें नया दांत भी दे देते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग हमें प्रेरित करते कहते थे कि आप हमारा ये दांत ले लीजिए और हमें दूसरा
0: दांत दे दीजिए। तो मुझे अपना भी याद है आरती, जब मेरा दांत टूटा था मैं सूरज देवता के सामने खड़े होके कहती सूरज देवता मेरा ये दांत टूट गया है, मुझे नया दांत दे दो ना। तो ये क्योंकि कहा गया होगा ऐसा, और मुझे वो सीन अब याद हो आया कि मैंने भी बचपन में ये किया है ना। अब समझ आता है कि हम कितने भोले हुआ करते थे, जैसा कहा जाता था हम मान लिया करते थे।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो उसका निदान था कि अपनी उंगलियों से हवा में क्रॉस बनाओ या स्वास्तिक एक बना दीजिए आप।
0: अच्छा।
1: तो उससे मतलब उसका प्रभाव हट जाता है। तो ये बिल्ली वाला तो आज भी चल रहा है
0: कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है
1: कितना भी जरूरी काम क्यों ना, हम वहीं रुके रहते हैं,
0: बिल्कुल
1: खेलते नहीं।
0: कैसा दिमाग में अंकित हो गई है कुछ चीजें, उनके तर्क कुतर्क अगर हम करने लगे तो फिर बहुत सारी बातें निकल आती हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम झाड़ू को देखकर ऐसे निकलते थे जैसे घर में कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा हो। इसके अलावा बचपन में उल्लू, छिपकली, छींक, रास्ते में कोई चीज

0: इन सबके हाँ। भी अपने अपने मतलब बताए जाते थे, और अगर घर से निकलते समय किसी ने छींक दिया तो हम रुक जाया करते थे। हाँ। ये तो होता था,
1: ये तो आज भी होता है,
0: तुम्हारा छींको, दूसरी छींक, अरे दो छींक आई है, अब निकलो।
1: हाँ।
0: है ना, कितना
1: बहुत सारी चीजें।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब हम छोटे थे तो ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी कि पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रखने पर उससे इरेजर बन जाता है, मतलब रबड़ बन जाती है। तो हम बच्चे पेंसिल के छिलके दूध में भिगो कर रख देते थे, हालांकि कभी भी उससे इरेजर नहीं बना। ये चीज तो मैंने भी करी हुई है, कुछ नहीं बनता उससे, सिर्फ डांट पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं।
0: लेकिन ये देखिए बचपन के वो दिन हम याद कर रहे हैं जिन्हें हम कई बार भूल भी जाते हैं, और आज उस टॉपिक के माध्यम से वो दिन याद आने लगे हैं। और लिखते हैं कि एक श्रोता कि सच तो ये है कि इन बातों में से बहुत सी बातें हमें बचपन में सच लगती थी, आज हम बड़े हो गए हैं, तर्क और विज्ञान को समझने लगे हैं, हमें किसी भी बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानना चाहिए, लेकिन इन पुरानी बातों की याद आते ही चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाती है। हमें तो हंसी आ रही है,
1: बिल्कुल
0: मुस्कान तो क्या कहें, क्योंकि ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये हमारे बचपन की यादों का हिस्सा थे। दादी नानी की सख्त हिदायतें थी, माँ की डांट और हमारी मासूमियत थी।
1: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता जी लिखते हैं कि जब मैं स्कूल में था उस समय से मुझे इंडिया की जो नेशनल टीम है उसके मैच देखने का बहुत दीवानापन था, तो मुझे अंधविश्वास था कि अगर टेलीविजन पर मैं लाइव मैच देखूंगा तो इंडिया की जो टीम है वो हार जाएगी, इसे टीवी बंद करके मैं रेडियो कमेंट्री सुना करता था। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत अच्छा किया। और ऐसा मेरे साथ कई बार सच में हुआ भी था, बाद में अगर उस समय मैच के मुख्य अंश दिखाए जाते थे तो टेलीविजन पर देख लेता था, अब क्रिकेट मैच में मैं एंजॉयमेंट के लिए लाइव देखता हूं, पर अंधविश्वास नहीं है, जो मैच जीते वही सिकंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना हमें पैशन रहता था कि टीम में कब क्या हो रहा है, हम लोग इतनी शक्ति लगा देते थे उस मैच को देखने में कि अगर उस दौरान कोई उठ गया तो हम कहते तू उठा क्यों, भाई वो बॉल चली गई है ना, वो आउट हो गया प्लेयर हमारा। तो इस तरह की कई बातें हमें याद आती है। मुझे एक चीज और याद आती है आरती, हमारी सहेलियां कहती थी कि जो गिलहरी है ना इसकी पूंछ पर पत्थर मारो वो 25 पैसे देती है।
1: ये तो
0: हमें याद है, हमारे दीवारों पे छत की मुंडेर पर गिलहरियां आती थी, हम पत्थर इकट्ठे कंकर करके उसको मारते थे, अब वो कंकर ना उसके वहां लगता ही नहीं था पूंछ पे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट होती थी
1: गिलहरी, आपके पकड़ में कभी नहीं आ सकती।
0: हमें लगता काश ही 25 पैसे दे दे हमको, काश ही 25 पैसे दे दे हमको।
1: और एक हमारे भाई साथी है वो भी लिखते हैं कि बचपन में एक और अंधविश्वास था, जैसे ही तारा टूटा दिखाई दिया तो या 5 फल का नाम ले लो या 5 उंगली मुंह में डाल लो, और हम ये करते भी थे। बहुत बढ़िया,
0: सुंदर। तो और कुछ है बताइए। हाँ,
1: एक हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि कोई तारीफ कर इसमें बड़े होने के बाद भी कुछ कितने ही अंधविश्वास में जीते हैं, जैसे बाहर निकलने पर बिल्ली का रास्ता काटना, कोई तारीफ कर दे तो नजर लगने का डर होना। हम लोग जब स्कूल में थे तब हम लोग एक मैना देख लेते थे तो लगता था कि कुछ बुरा होने वाला है, और जैसे ही 2 मैना दिख जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे। तो मैं तो अब इन बातों पर भरोसा नहीं करती, पर मेरी सहेली जो कि मतलब जॉब करती है तो अभी भी इस बात को मानती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिले तभी उसे एक मैना दिखाई दी तो बहुत मायूस हो गई, कि वो कहने लगी कि इसलिए मैं अपने मोबाइल में 2 मैना की तस्वीर रखती हूँ। हम सारी सहेलियां उसकी इस बात पर बहुत हंसे, और मेरी मम्मी का कहना है कि कभी भी मुझे एक आंख मत दिखाया करो, और वो दिन भर एक आंख दिखाने में गुस्सा हो जाती।
0: बिल्कुल सही कहा, जब हम किसी एक पक्षी को देखते हैं तो कहते हैं 1/4 सौरो, और 2 जोड़ा दिखता है तो हम कहते हैं 2/4 जॉय। तो ये इस तरह की हमने धारणाएं बना ली हैं कि जोड़ा दिखेगा तो अच्छा कुछ होगा, अकेला कोई दिखेगा तो बुरा कुछ होगा। ये इस तरह की धारणाएं आज भी हमारे साथ चल रही हैं, और गाहे बेगाहे हम उससे प्रभावित होते भी।
1: बिल्कुल, और बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने मैसेज भेजे हैं, कमेंट भेजे हैं, लेकिन इतना हम गीत नहीं सुनेंगे तो फिर संगीत की कमी हो जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: हाँ तो आरती, प्यार तो हम अपने आप से भी करते हैं, अपने परिवार वालों से
1: और हम एक दूसरे से भी करते हैं, और अपने सखियों अपने सखाओं से भी करते हैं।
0: बिल्कुल करते हैं, और अपनी रसोई से भी करते हैं, जहाँ हमें सुस्वादु भोजन बनाना पड़ता है,
1: स्वास्थ्यपूर्ण
0: भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्या लिखा है हमारी सखियों ने कि कैसे रखती है वो अपनी रसोई को साफ सुथरा?
1: एक हमारी जो सखी है वो कहते हैं कि रसोई को चमकती और साफ रखने के लिए रोज खाना बनाने के बाद गैस और काउंटर को साफ कर लीजिए अच्छे तरीके से। बर्तन को तुरंत धोकर व्यवस्थित करके रखें। फर्श पर गिरे पानी या खाने को तुरंत साफ करें। सप्ताह में एक बार अलमारियों और फ्रिज की सफाई करें। सूखे और साफ कपड़ों से सतहों को पोंछें। कूड़ेदान को रोज खाली करें। इस तरह थोड़ी सी नियमित सफाई करने से रसोई जो है वो हमेशा साफ और चमकती रहेगी।
0: बिल्कुल, हमारी एक सखी लिखती है कि रसोई को हमेशा चमकता और व्यवस्थित रखने के लिए सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से छोटे छोटे उपाय अपनाएं। किचन सिंक की सफाई, सिंक को साफ करने के लिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा बर्तन धोने का जेल और विनेगर मिलाकर घोल बनाएं। इस मिश्रण से सिंक और स्टील के नलों पर लगे हार्ड वाटर के जो दाग हैं आसानी से हट जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। काउंटर टॉप और स्लैब की देखभाल मैजिक ब्रिक्स की किचन टीप क्लीनिंग जो गाइड है उनके अनुसार करें। बाबरे, बहुत ही इन्होंने तो टेक्निकली लिख दिया है। काउंटर टॉप की सामग्री के आधार पर सुरक्षित सफाई करें, घोल चुनें, गर्म पानी हल्के साबुन के घोल से जिद्दी दागों को तुरंत पोंछे ताकि चिकनाई न जमे। फर्श पर तेल या दूध गिरने से फर्श या उसको साफ भी रखें। सूखा आटा छिड़क कर भी साफ रख सकते हैं। आटा सारा तेल सोख लेता है जिससे 5 मिनट बाद अखबार या कपड़े से पोंछने पर चिकनाई आसानी से साफ हो जाती है।

0: तांबे के बर्तनों को चमकाना है तो पुराने और काले पड़ चुके तांबे और पीतल के बर्तनों के बेस को साफ करने के लिए टोमेटो केचप का इस्तेमाल करें। केचप लगाकर कपड़े से रगड़ने पर बर्तन तुरंत चमक उठते हैं और किचन का हर कोना जिद्दी और गंदगी को आसानी से साफ करने के लिए हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी जो लिखती हैं कि रसोई में सभी दाल चावल मसाले जो भी हैं, या तो उनको ट्रांसपेरेंट जो ऐसे दिखते हैं जो ऐसे डिब्बों में रखें और उन पर नाम लिख देने चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। हर बार भोजन बनाने के बाद आसपास गिरे सभी गंदगी को साफ कर देना चाहिए। मसालों और दाल आटे के डिब्बे को भी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए। इस तरह थोड़ा बहुत साफ करते रहने से रसोई साफ रह सकती है। एक ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा वहां पे फैन लगा होना चाहिए जिससे कि रसोई में दम घुटन सी ना हो, और धूप आने से ऐसी कोई खिड़की भी होनी चाहिए और हवा के लिए अच्छा रास्ता होना चाहिए। तो धूप आने से रसोई का वातावरण शुद्ध रहता है। कुछ सफाई हफ्ते में और महीने भर में एक बार करनी ही चाहिए। जो शुद्ध रसोई में भोजन शरीर जो करते हैं, जो बनाते हैं, तो शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक लिखते हैं कि बारिश के मौसम में रसोई में नमी, सीलन और चिकनाई जल्दी होती है। कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे साफ सुथरा और चमकदार रखा जा सकता है। बहुत सारे इन्होंने उपाय लिखे हैं। और इसके अलावा लिखते हैं कि किचन साफ सुथरा होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि जब भी कुछ सब्जियां काटें उनके छिलकों को अच्छी तरह से समेटें, फेंके नहीं। कभी कभी छिलके जमीन पर पड़े रहते हैं और उनसे पैर फिसलने का डर भी बना रहता है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे केला खाते हैं, छिलका फेंक देते हैं तो कोई आएगा अचानक पैर फिसलेगा सड़क पर, कहीं भी आप धड़ाम से गिर जाएंगे।
1: बिल्कुल। और बहुत जरूरी है कुछ चीजों को ध्यान रखें, तो क्योंकि रसोई ऐसी जगह है ना कि अगर हम साफ नहीं रखेंगे तो जो खाना पड़ा रहेगा अगर वहाँ पे, तो चूहे या इस तरीके की चीजें,
0: कॉकरोच
1: आ जाते हैं।
0: बिल्कुल। कीट पतंगे जो है वो घर में होते ही हैं, और इनका ध्यान रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कम सामान रखें और इतना सामान रखें जितनी रसोई में जरूरत हो।
1: एक बार खाली डिब्बे जमा मत करिए।
0: बर्तन इकट्ठा कर लेते हैं शौकिया, और किचन में और सिंक में दुनिया भर के बर्तन लगा देती हैं गृहिणियां दिन भर, कि शाम को साफ कर लेंगे या बाई आएगी तो अगले दिन मांज लेगी। वो जो ढेर होता है बर्तनों का वो घर में एक अलग सी स्थिति पैदा कर देता है। ऐसी स्थिति में खाना बनाना भी जो है अच्छा नहीं लगता,
1: और वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक रहता
0: है। बिल्कुल। स्वास्थ्य से तो हम खिलवाड़ करते ही हैं, और बहुत कुछ चीजें जो है हमारे घर की गृहिणी पर निर्भर करती है कि वो अपनी रसोई को किस तरह से साफ सुथरा रखिए।
1: और जो फालतू के सामान उनको जमा मत करिए। और इस समय एक छोटा सा गीत सुनते हैं।
0: बिल्कुल
1: प्यारा सा।

आरती, बहुत सुंदर गीत था ये, और मुझे लग रहा है कि मैं भी तुम्हारा नाम गुलमोहर रख दूं। और पता है गुलमोहर का क्या होता है? गुल यानी फूल, मोहर मतलब चमक, जो सुंदर है, जो अच्छा। शोभित है, यानी गुलमोहर जो एक सुंदर पेड़ का नाम भी है जिस पर चमकीले

0: लाल नारंगी फूल खिलते हैं और इसलिए ये नाम खुश सुंदरता का, खुशहाली का, रंगों और प्रकृति की शोभा का हम प्रतीक मानते हैं। और तुम अभी बिल्कुल वैसी ही लग रही हो, खिलाती भी सुंदर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको ये।
0: तो चलिए अब जो है सखी सहेली कार्यक्रम से हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस कार्यक्रम से आज मंदाकिनी जोशी
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों विविध भारती का स्टूडियो नंबर एक हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। तो बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को एतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज, देखते हैं ये पहला कॉल कहाँ से आया है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैहर एमपी से।
0: एमपी कहाँ से, कौन सी जगह से? एमपी के
1: मैहर, मैहर से बात कर रहा
0: हूँ। मैहर से भाई, मैहर तो तीर्थ स्थल है, वहाँ लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो अभी वहाँ पर सीढ़ियाँ बहुत सारी चढ़नी पड़ती थी, तो कोई अभी सड़क वगैरह बन गई, व्यवस्था हो गई कि आसानी से आप चढ़ सके?
1: जी जी जी मैम, अभी तो आसानी से दर्शन करने के लिए आते हैं, बाकी सुविधा तो पूरी तरह से हो गई है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी फिल्म इतिहास सुनवा दीजिएगा, और गाने के बोल है जुदा अपने दिलवर से होने लगी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: फरमाइश
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सूरत से बोल रहे हैं सर। मेरा
0: नाम आपका?
1: जितेंद्र।
0: जितेंद्र जी, बताइए क्या हाल है?
1: सलून का दुकान है मेरा।
0: अच्छा, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: जीत जाएंगे हम जिंदगी हर कदम, जंग फिल्म का गाना है।
0: अगर मन में चाहत हो तो सचमुच हर कदम पे आपकी जीत हो सकती है, और बस
1: क्या करूं,
0: अपनी मेहनत करते रहना है जिंदगी में, यही तो फलसफा है जिंदगी का।
1: ओके मैडम।
0: ठीक है, तो धन्यवाद आपको कि आपने हमें फोन किया। तो अभी अब बातचीत कर रहे हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान पोस्ट औरंगाबाद जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह साख से बात कर रहा हूँ।
0: रूप सिंह
1: साख्य?
0: साख्य, अच्छा बताइए रूप सिंह जी, क्या हाल है और अपने कासगंज है उस गांव के बारे में भी बताइए।
1: हमारा गांव तो एक देहाती एरिया में है और खेती बाड़ी करता हूँ मैं।
0: खेती बाड़ी में कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: सभी तरह की उपजती है, जैसे बाजरा है, धान है, मक्का है, आलू है जी।
0: तो आप
1: धान और मूंगफली की खेती लगी हुई है।
0: अच्छा बढ़िया, तो व्यापार भी करते हैं आप?
1: व्यापार नहीं करते अभी।
0: ओके, सिर्फ मतलब खाने भर की उपज होती है।
1: जी जी जी
0: जी, बताइए, गानों के शौकीन हैं, गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो कौन से गाने पसंद आते हैं, पुराने गाने या नए गाने?
1: पुराने सबसे ज्यादा पसंद आते हैं, मोहम्मद रफी है, मुकेश हैं, किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसे।
0: जी जी, इन गायिकाओं की आवाज भला कौन नहीं पसंद करेगा, बताइए फिर कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म है जीने की राह।
0: जीने की राह
1: जी, और गाने के बोल हैं, एक बंजारा गाय जीवन के गीत सुनाए।
0: क्या बात है भाई, बड़ा ही दर्शन वाला गाना चुना है आपने, और सचमुच जीने की राह के बारे में पता चल जाए तो जीवन कितना आसान हो जाए ना।
1: जी बिल्कुल
0: जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट है वारंगाभाटा, तालुका कलमदुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ बहन जी।
0: पांडुरंग जी बताइए, क्या हाल है आपका?
1: ठीक ठाक है। हमारे वारंगे फाटे की खिचड़ी खाने को आओ, खिचड़ी प्रसिद्ध है वारंगा फाटा की।
0: अच्छा भाई, वाह, जरा उसकी रेसिपी बता सकते हैं तो बताइए, कैसे बनती है खिचड़ी, क्या खासियत है खिचड़ी की?
1: तुम्हारे को यहाँ से हम सेंट छोड़ेंगे, बोले तो उसका स्वाद छोड़ेंगे।
0: जी जी जरूर।
1: खिचड़ी का
0: हाँ, तो अभी बताइए उसमें क्या खासियत है उस खिचड़ी की? वैसे तो दाल चावल,
1: बोले तो मसूर की दाल है और चावल है और बाकी सब मसाला रहता है, गरम मसाला।
0: अच्छा जी जी
1: हाँ,
0: तो किसी विशेष दिन बनती है क्या ये खिचड़ी की रोज खाई जाती है?
1: नहीं नहीं नहीं विशेष नहीं, हमारे यहाँ की प्रसिद्ध है वारंगा फाटा, बोले तो खिचड़ी पहले से शुरुआत में ये प्रसिद्ध है।
0: बढ़िया भाई, खिचड़ी तो सुस्वाद भोजन नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो मसालेदार खिचड़ी तो अच्छी लगती है और फायदेमंद बहुत है,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: है ना, कहा जाता है कि सप्ताह में एक दिन तो खिचड़ी खानी चाहिए। पर
1: हाँ, नाश्ते में खिचड़ी मिलती, खिचड़ी
0: हाँ
1: और भजिया मिलता है
0: तो बना भी
1: कड़ी भात
0: लेते,
1: में।
0: आप बना भी लेते हैं कि सिर्फ खाने के शौकीन हैं?
1: नहीं नहीं बना लेते नहीं, हम देते हैं ग्राहक को।
0: अच्छा, आपकी कोई शॉप है क्या?
1: हाँ, होटल है
0: अच्छा,
1: वारंगा फाटा में होटल है।
0: क्या बात है। अब देखिए, हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि हमको भी मौका मिले कभी वारंगा फाटा जाने का। वैसे
1: कभी भी मिलेगा खिचड़ी नाश्ता और खुश हो
0: जी
1: जाएंगे
0: जी
1: खाने के बाद।
0: वैसे जिस शहर में जाए, जिस जगह पे, वहाँ की कोई मशहूर चीज हो तो वो जरूर चखना चाहिए, स्वाद चखना चाहिए, है ना?
1: हाँ, इधर नागपुर रोड जाता है, अकोला नांदेड़ रोड जाता है, चौक रास्ता है, टी पॉइंट है और हर तरफ से गाड़ी आए तो हमारे गांव से ही जाते हैं।
0: अच्छा, क्या बात है भाई, चलिए बड़ा अच्छा लगा जानकर। अब बताइए कि गाना आपको कौन सा पसंद आ रहा है इस समय?
1: गाना सुना है रोटी कपड़ा मकान में का,
0: हाँ,
1: महंगाई मार गई।
0: तो आपको कहते हैं धन्यवाद और सुनवाते हैं आपको ये गाना, फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान।

कहा तकता है क्या, मैंने कहा सूरत तेरी, उसने कहा चाहता है क्या, उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी एक

0: हेलो फरमाइश।
1: न जाने ये नजर क्यों उदास रहती है, न जाने से किसकी तलाश रहती है, ये जान के भी किस्मत में हमारी के फोन को लगे या ना लगे, मैडम जी हमें फिर भी फोन लगने की आस रहती है।
0: क्या बात है, और हमें भी आस
1: मैडम जी
0: रहती है।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइएगा, और हम आपके जो आपने शुरुआत की उसके जवाब में ये कहना चाह रहे हैं कि आज तो हमें भी रहती है कि हमारे श्रोताओं के कॉल लग जाए और हमारी बातचीत हो जाए। कहिए।
1: सतीश गुलियानी, दिलकुशा मार्केट, जलंधर, पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: सतीश गुलियानी
1: जी जी जी
0: जी, तो बताइए वहाँ के बारे में, जलंधर के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जलंधर में जानकारी मैडम सबसे बढ़िया, यहाँ देवी तलाब मंदिर है हमारी माता जी का, जिनके सहारे हम जीते हैं। बहुत बढ़िया पुराना मंदिर है ये, बहुत सब मनोकामना यहाँ पूरी होती है। बाकी घूमने फिरने बच्चों के लिए वंडर लैंड है, बहुत बहुत कुछ है मैडम यहाँ देखने को। नान खाने को बहुत अच्छे हैं यहाँ।
0: क्या खाने को?
1: छोले छोले पूरी,
0: अच्छा
1: छोले
0: अच्छा
1: भटूरे जो पंजाबी खाते हैं जी।
0: छोले भटूरे तो वैसे भी पंजाब के बहुत मशहूर होते हैं जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: जी,
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और बताइए वहाँ के थोड़े कल्चर के बारे में बताइए। पंजाब का जो लोक संगीत है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सारे लोक धुनों पर आधारित पंजाबी गाने आजकल फिल्मों में भी शामिल किए जा रहे हैं, और बहुत सारे फिल्मी
1: हाँ
0: गीत
1: जी
0: में
1: हाँ जी
0: पंजाबी
1: बिल्कुल
0: शब्द
1: मैडम,
0: होते हैं।
1: पंजाबी जैसे जैसे ये एक एक लाइन है,
0: हाँ
1: ओ पेके जान वाली है नी किन्ना, ओए होए नी किन्ना, आए नी किन्ना चीर लाएंगी। ये गाना पंजाबी है जी हमारा,
0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया।
1: बहुत बहुत चलता है।
0: हाँ जी, तो पंजाब की पृष्ठभूमि पर एक फिल्म भी आई थी, बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ के गायक हैं जो बहुत मशहूर हुए थे, याद है क्या?
1: सारे गायक सारे मशहूर हैं यहाँ पे, हम भी मशहूर हैं मैडम यहाँ पे, ऐसी बात
0: अच्छा,
1: नहीं।
0: आप किस लिए मशहूर है भाई, बताइए, बहुत बड़ी अच्छी बात है ये तो।
1: हम रेडियो रेडियो के लिए मशहूर हैं, जो कि प्रोग्राम चलता है ना,
0: हाँ,
1: तो उसमें हम भी फोन यहाँ पे लोकल फोन करते हैं हम।
0: अच्छा, मतलब फोन करने के लिए मशहूर है कि आपके कॉल हर
1: हाँ जी
0: प्रोग्राम में लग जाता है। वाह भाई, क्या
1: हाँ
0: बात है।
1: जी जी जी जी
0: और अपने
1: जी जी
0: बारे में
1: सर,
0: बताइए, करते क्या है आप?
1: हमारा मैडम फूड सप्लीमेंट का काम है।
0: अच्छा।
1: हम तो यही कहते हैं कि नशों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, जल्दी सुबह उठो,
0: जी
1: सैर
0: जी
1: करो,
0: बिल्कुल
1: और सबसे बड़ी बात कि अपने माता पिता की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो।
0: बिल्कुल, तो आप अपने
1: फोन
0: माता
1: उसके
0: पिता की
1: बाद आ
0: सेवा
1: जाए।
0: करते हैं ना?
1: मैडम मेरे माता पिता नहीं है, मेरी उम्र अच्छा बहुत ज्यादा हो गई है, 67 है।
0: अच्छा, ओह।
1: मैडम मैं जब छोटा था तो मुंबई दौड़ गया था एक्टर बनने के लिए,
0: फिर लौटे कैसे?
1: लौटे मैडम किस्मत में साथ नहीं दिया, मैं वीरू देवगन के साथ था।
0: बढ़िया,
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपकी तो आवाज भी
1: तो
0: अच्छी
1: बस
0: कड़कदार है।
1: हाँ मैडम, वक्त ने अपन के साथ वफा नहीं किया, लेकिन वक्त की हम अभी भी बहुत कदर करता है।
0: जी जी जी
1: बिल्कुल मैडम, यहाँ वहाँ पे पता नहीं कब आपकी किस्मत पलटी खा जाए,
0: हाँ जी हाँ जी
1: कब किस्मत बदल दे। और देखो मैंने वहाँ ऐसा देखा है कि लोग चाहे भूखे भी रहते हैं, कहते हैं हम रहेंगे मुंबई में, वापस नहीं जाएंगे हम।
0: जी बहुत सारे जो ऐसे कलाकार हैं जो आज आकाश की ऊंचाइयों पर हैं, उन्होंने भी
1: हाँ
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: संघर्ष किया
1: बिल्कुल,
0: है।
1: ये धर्मेंद्र जी हमारे पंजाब के हैं,
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं भी अपने शूटिंग में जाता था, मैं भी
0: जी।
1: शूटिंग में जाता था, मुझे लाइट उसका काम मिला था, लाइट मैन का।
0: अच्छा अच्छा बढ़िया।
1: लेकिन मुझे मुझे किसी ने बताया कि आपकी आवाज है लाइट मैन, ये लेवल वाली नहीं है, आप किसी साइड मास्टर के साथ मिल जाओ।
0: अच्छा,
1: तो
0: वाह
1: फिर
0: भाई,
1: मैं मिल गया था जी वीरू देवगन जी के, अजय देवगन जी के पिताजी हैं, वीरू देवगन के पिताजी हैं उनके साथ।
0: अच्छा।
1: तो बात खास सुनी हो गई एक दिन रात को जरा सी बात पे, कि मैं बिन बताए उनके कमरे में चला गया, उन्होंने कहा गेट आउट।

0: अगर से आ जाता तो आज मैं कामयाब होता।
1: इसमें दो बातें हैं, कई बार क्या होता है बड़ों की डांट आपके लिए बहुत मायने रखती है और अच्छी भी लगती है, लेकिन कई बार आपका जब सेल्फ रिस्पेक्ट चोटिल होता है तो आप वहां नहीं रहना चाहते हैं,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: आपने
0: जी
1: अपने आप चुना। कौन सा गाना आप
0: जी
1: सुनना
0: जी
1: चाहते हैं, कौन सी फिल्में देखी हैं धर्मेंद्र जी की जो बहुत
0: सारी
1: पसंद है?
0: फिल्म देखी है मैडम, सारी फिल्म देखी है। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा छोड़ूंगा नहीं लाला, बहुत फिल्में देखी है मैडम मैंने, बहुत पिक्चर देखी है, क्या क्या नाम बताऊंगा इनका, बहुत
1: क्या
0: फिल्म
1: बात
0: देखी
1: है, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
0: है। इज्जत फिल्म का गाना सुना दो जी, ये दिल आकाशवाणी में ना लगता नहीं हम क्या करें।
1: अच्छी बात है जी, इज्जत फिल्म का
0: शुक्रिया
1: गाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया और इतनी
0: शुक्रिया
1: सारी
0: माता
1: बातें
0: जी,
1: साझा की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं इज्जत फिल्म का ये गाना।
2: ये दिल।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं छत्तीसगढ़ कटोला तालाब रायपुर से मोहन लाल देवांगन मास्टर महोदय बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी मोहन लाल देवांगन जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बहुत ही पुराने श्रोता हैं आप तो।
1: जी हाँ, देखिए मैं विविध भारती का बहुत दीवाना हूँ और मैं बता दूँ कि मेरे परिवार भी वैसे दीवाना है।
0: जी ये दीवानापन हमेशा बना रहे, यही हमारी शुभकामना है और हमारी यही कोशिश भी रहेगी कि प्रोग्राम की गुणवत्ता बनी रहे ताकि आप सभी का दीवानापन जारी रहे।
1: जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब बताइए,
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: क्या काम काज है आपका, हमारे श्रोताओं को बताइए, जो नए श्रोता हैं वो भी आपके बारे में जाने।
1: जी जी जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ट्रेडिंग शॉप है मेरा करोला रायपुर में मोहन जय के नाम से है और मेरा बेटा भूपेश देवांगन और तुषार देवांगन फैशन डिजाइनर है।
0: अच्छी बात है, क्या बात है।
1: हम लोग साथ में मिलकर सब करते रहते हैं और उसके बाद जो है देखिए मेरा बेटा जो फैशन डिजाइनिंग किया है, एक जो दिल्ली से किया है और एक छत्तीसगढ़ से किया है।
0: जी जी।
1: तो वो सब हम एक साथ जो सब काम करते रहते हैं और मेरा एक और दुकान यहाँ पर शोरूम बड़ा बनने जा रहा है मतलब बन के लगभग तैयार होने पर है, हो जाएगा इस महीने में।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये मिलजुल कर जो काम कर रहे हैं, शोरूम भी तैयार हो गया, तो ये आपकी मेहनत का कमाल है कि आपने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी होगी कि वो मेहनती हैं और उस
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो नए बच्चों को भी गानों से जोड़

0: रखा है, रेडियो से जोड़ रखा है आपने?
1: वो तो मैं समझता हूँ कि मेरे से ज्यादा सुनते हैं मैडम जी, सुबह अच्छा। वो वर्कशॉप में रहते हैं तो कोई रेडियो चलता रहता है, सुबह 6 बजे चालू हो जाता है और रहते हैं रात को 11 बजे बंद होता है, टीवी देखते रहते हैं लेकिन रेडियो बंद नहीं होता।
0: ये बात बहुत अच्छी है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी पुराने गानों से और पुरानी परंपरा से, पुरानी विरासत से जोड़ के रखना जरूरी है। तो अब बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: देखिए मैडम जी, इस समय देखिए मेरा जन्मदिन होता है मोहनलाल जवाहर के नाम होता है मोहन मुरारी, लेकिन अब ये कृष्ण जन्माष्टमी का भी है। मैं सभी श्रोताओं को, आप विविध भारती परिवार को सबको शुभकामनाएं देता हूँ।
0: और कृष्ण जन्माष्टमी की जब बात चले तो हम ये जानना चाहते कि कृष्ण कर्म का संदेश देते थे, लेकिन कृष्ण के बहुत सारे रूप हैं, एक बाल रूप है, उनका सखा रूप है और एक ऐसा रूप है जो दर्शन सिखाता है। आपको कौन सा वाला रूप पसंद आता है श्री कृष्ण?
1: मुझे तो उसका बचपना रूप बहुत अच्छा लगता है,
0: बाल रूप।
1: बाल रूप बहुत बहुत अच्छा लगता है और उनका जो बाल रूप में हर एक पास में नटखट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मैडम जी।
0: जी जी, उनके बाल रूप का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है सूरदास ने, कभी पढ़िए सूर की पद रचना। उन्होंने एक जगह लिखा है, किलकत कान घुटूरवन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकरी बे धावत। तो श्री कृष्ण जी के लिए ये रचना उन्होंने की है, तो आप जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि सचमुच कृष्ण का बाल रूप सामने आ गया है। कौन सा गाना सुनवाया जाए मोहनलाल जी?
1: मैं गीत चुना हूँ फिल्म खुददार का और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की और उसका बोल है, मच गया सुर सारी नगेरी रे, आया भी अज का बाका संभाल तेरी जगेरी रे।
2: मच गया।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से?
1: खलील अहमद
0: जी खलील जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम फिल्म है पगला कहीं का और तुम मुझे यूं भुलाना पाओगे, ये गाना सुनना चाहिए
0: जी। अपने बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं?
1: हम तो रिटायरमेंट है, अभी घर में है फिलहाल।
0: अच्छा, क्या काम काज करते थे?
1: हम तो ईंट जुड़ाई का काम करते थे।
0: अच्छा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा काम है, ईंट अगर ना हो तो घर कैसे बने? घर का निर्माण करना है तो ईंट बनाना ही पड़ेगा।
1: जी,
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: तुम

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत हेदाराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ मैम।
0: आपका शुभ नाम?
1: बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बाबूलाल जी, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या काम काज है आपका?
1: क्या सैलून की दुकान है मैम
0: जी, और भोपाल शहर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे?
1: भोपाल।

0: अच्छा शहर है मैम जी, तालाब वगैरह है देखने के लिए, अच्छी है जगह, बने बढ़िया है, कमला पार्क है
1: जी,
0: जी मैम।
1: और गाना किस तरह का पसंद करते हैं, पुराने गाने पसंद है या नए गाने पसंद है आपको?
0: पुराने गाने मैम, पुराने गाने।
1: तो आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: आज मैम सुनेंगे हम दाता फिल्म का गीत और बाबुल का घर ये बहना।
1: बेहतरीन गाना चुना है आपने, अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं निर्मल डिस्ट्रिक्ट भैंसा गांव से मोतीराम पिंगले बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी मोतीराम जी, बताइए अपने गांव के बारे में, बताइए जरा और अपने बारे में भी जानकारी दीजिए।
1: एक कस्बा है मैडम, उतना कोई खास नहीं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर सरस्वती माता का एक टेम्पल है। यहाँ पर काफी लोग महाराष्ट्र से आते हैं, दूर दूर से आते हैं मैडम दर्शन करने के लिए।
0: लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: लोग अच्छे हैं मैडम, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई हादसा नहीं होता है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। इतना सेफ एरिया है मैडम हमारा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर तो
1: हाँ हाँ
0: खास हो गया
1: मैडम,
0: ना
1: हाँ हाँ
0: आपका शहर। लड़कियों की शिक्षा के लिए वहाँ पर लोग कोशिश करते हैं, मतलब लड़कियाँ पढ़ने
1: कोशिश
0: लिखने
1: नहीं
0: जाती?
1: मैडम, बहुत आगे है मैडम।
0: क्या बात है,
1: यहाँ पर SSC या इंटरमीडिएट जब एग्जाम्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा लड़कियाँ पास होती है मैडम।
0: अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संगम फिल्म का मैडम, मुकेश का गाना, राज कपूर के ऊपर फिल्माया गया, ओ महबूबा मेरे दिल के पास ही तेरी मंजिल है मजबूत।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन की।
1: मैम एक एक एक एक रिक्वेस्ट है मैडम, क्या मैं गाना गाकर सुना सकता हूँ मैम?
0: जरूर जरूर सुनाइए।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से, मैं आपका नेम श्वेता लतीफ अहमद रैना।
0: सोनमर्ग से बोल रहे हैं? सोनमर्ग तो भाई पर्यटकों के लिए बड़ी खूबसूरत जगह मानी जाती है।
1: हाँ हाँ, यहाँ तो पर्यटक हर लगभग 1500 से ज्यादा ज्यादा एक दिन में आते हैं।
0: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम।
1: हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, दूध पथरी है ना, बड़गाम के साइड में दूध
0: जी,
1: पथरी।
0: तो इस समय वहाँ पर मौसम कैसा है? ठंडा है या नॉर्मल है?
1: मैं नहीं उतना गर्मी, नहीं उतना ठंडी, नॉर्मल।
0: जी, तो आपका क्या काम
1: हाँ
0: है
1: जी, बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ
0: वहाँ पर?
1: जी।
0: खेत के लिए जब खेत में काम करते हो तो किस तरह की फसल उपजती है, मतलब वहाँ की पैदावार कैसी है?
1: पैदावार तो बहुत अच्छी यहाँ, इस साल तो यहाँ बारिश की वजह से बहुत कम फसल उगाया है।
0: कौन सी
1: हाँ,
0: फसल उपजती है ज्यादातर?
1: यहाँ पे ज्यादा और धान और मक्का एक ही फसल बनते हैं ना साल में यहाँ पे।
0: अच्छा, बर्फ गिरती है तो
1: यहाँ
0: आप
1: तीन
0: लोगों
1: फुट
0: को बड़ी परेशानी होती होगी, है ना?
1: हाँ बहुत परेशानी है, 3 फुट कभी 4 फुट ऐसा ऐसा बारिश आता है, बर्फ आता है यहाँ पे।
0: जम जाता है बर्फ, और जो बाहर से घूमने जाते हैं उन्हें बर्फ बहुत ही रोमांचित करती है और बर्फ देखने के लिए लोग
1: हाँ,
0: जाते हैं।
1: उनको वो सोनामर्ग में तो लगभग 7-8 महीने तो बर्फ ही रहता है।
0: जी, तो
1: हाँ,
0: बताइए, तो कश्मीर की वादियों में कौन सा गाना आपके लिए भेजा जाए, आपकी पसंद का?
1: फिल्म का नाम है कुली नंबर 1, इसको दूसरे गाड़े कोई भी सुनाइए। हाँ
0: तो ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया इतनी दूर से और कश्मीर के बारे में इतनी सारी जानकारी भी दी, और आपको अब सुनवा रहे हैं कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना।

0: तो दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के फोन कॉल आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इसमें सहभाग का मौका मिले। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल करते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर एक और है, इसे भी आप नोट कर लें, 4002466 2, मुंबई का STD कोड 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता दें, 2867-0288। इसके अलावा एक नंबर और 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: आपके साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और बेल्जियम ने आज व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विभिन्न क्षेत्रों की बढ़ती भागीदारी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया और इसे समय पर लागू करने का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह के गठन की संभावनाएं तलाशने पर सहमति जताई। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत नियमित आदान प्रदान, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रक्षा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और साइबर अपराध से निपटने के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और बेल्जियम की संघीय पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द विवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश और एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और बेल्जियम के बीच घनिष्ठ तथा दीर्घकालिक संबंध हैं, जो आपसी सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने ये बात बेल्जियम के रक्षा मंत्री थेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने न्यूयॉर्क में उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन में निवेशकों से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में भारत के सुधार आधारित विकास की चर्चा की। उन्होंने 2026-27 की पहली तिमाही में देश की 7.8% आर्थिक वृद्धि और बेहतर निवेश माहौल का भी उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिक्षा क्षेत्र में भारत को नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बाढ़ की स्थिति और राहत शिविरों में व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने इस संबंध में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से टेलीफोन पर बात की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया है। महिला 2020 क्रिकेट एशिया कप में आज ग्रुप ए में भारत का मुकाबला हांगकांग से होगा। मैच दुबई में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ई डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: प्रवाचिका निधि ही झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। भारत बेल्जियम देशयोः व्यापारो द्विगुणी भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना बेल्जियम मन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यनेन सह नवदेहल्यां विहिता शिखर वार्ता। रक्षाक्षेत्रे नवीकरणीय ऊर्जायां च हस्ताक्षरंगताः प्रमुखाः सन्धयः। रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन बेल्जियम मन्त्रिणा थियो फ्रेडकन इत्यनेन सह क्षमता निर्माणाय कृता मन्त्रणा। न्यूयॉर्क नगरे समायोजितायां गोष्ठ्यां वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितम्। तया कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रे सूचना संग्रह केन्द्रेषु च भारते विद्यमानानां संभावनानां विवरणं प्रस्तुतम्। अपि च किदाम्बी श्रीकान्तः चीन मास्टर्स बैडमिंटन स्पर्धाया अन्तिमाष्ट चक्रम प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत बेल्जियम देशाभ्याम् अद्य रक्षा सहयोग विषयकेण आशयपत्रेण साकं नवीकरणीय ऊर्जा अन्ताराष्ट्रिय अपराध दमनम् राजनैतिक प्रशिक्षणं चेत्यादिषु क्षेत्रेषु सहमति पत्राणि हस्ताक्षरितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे नवदिल्ल्यां बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्रिणा बार्ट डी वेबर इत्यमुना सह द्वैपाक्षिकीं मन्त्रणाम् अकरोत्। उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र पक्षैः सह परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयानां विशदतया समीक्षां विहितवन्तौ। स्वकीये वक्तव्ये प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यत् सम्पूर्णं विश्वं महतः विप्लवस्य संघर्षस्थितेश्च कालखण्डेन गच्छदस्ति। खाद्य इंधन आपूर्ति श्रृंखलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु अनिश्चिततायाः प्रभावो दृश्यते। किन्तु एतादृशे काठिन्यमये वातावरणे अपि भारतस्य अर्थव्यवस्था स्वकीयां गतिशीलतां रक्षयति। विगत त्रैमासिके भारतेन 7.8% आर्थिक वृद्धिः समंकिता। सः न्यागादीत् यत् भारतस्य विकास यात्रा अद्य विश्वस्य कृते विश्वासस्य नूतनावसराणां च स्रोतभूतो विद्यते।
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है। हमारी सरकारों और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच हुए एग्रीमेंट से डिफेंस को डेवलप और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
1: सेमीकंडक्टर क्षेत्रे बेल्जियम देशस्य विशेषज्ञता अथ च भारतस्य विपुल विस्तारः परस्परं पूरकौ स्तः। अस्मिन् सन्दर्भे बेल्जियम देशस्य आईमेक संस्थानं भारतस्य सेमीकंडक्टर परिवेशेन सह संयोजयितुं कार्यं करिष्यति। अपरत्र बेल्जियम प्रधानमन्त्री बार्ट डी वेबर भारतं विश्वस्य बृहत्तम लोकतांत्रिक देशत्वेन तीव्रतम प्रवर्धमान अर्थव्यवस्था रूपेण च श्लाघमानः प्रमुख वैश्विक महाशक्तित्वेन च अभिहितवान्। इतः प्राग् अद्यैव रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः स्वसमकक्षेन बेल्जियम रक्षामन्त्रिणा थियो फ्रेडकेन इत्यमुना सह शिष्टमण्डलस्तरीय वार्ताम् अकरोत्। वित्तमंत्री निर्मला सीतारामनः न्यूयॉर्क नगरे वैश्विकानां उद्योगपतीनां गोष्ठ्यां भारतस्य आर्थिक सामर्थ्यं प्रदर्शितवती। सा अवोचत् यत् प्रथमे त्रैमासे 7.8% विकासेन भारतमद्य अपि विश्वस्य द्रुततम वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने कृताः आर्थिक परिष्काराः व्यापार सुगमतां वर्धितवन्तः। वित्त मंत्रिणा वैश्विक

0: मनप्रीत को अपने आप को थर्ड बैटिंग लाइनअप पे लाना चाहिए। मेरा ये एक मैंने जो देखा है अभी तक सिनेरियो, ये मुझे बैटिंग लाइनअप सबसे बेस्ट लगा है।
1: एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फर्स्ट बॉल 20 में, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार सर।
1: नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप?
2: सर मैं जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा एलओसी से फारूक अहमद बात कर रहा हूं सर।
1: बहुत स्वागत है आपका।
2: सर मुझे बता दीजिए कि इंडियन बैटर्स की ये जो प्रॉब्लम है स्पिन बॉलर्स के खिलाफ, ये कब तक जारी रहेगी? इसमें कोई सलूशन है तो वो बता दीजिए। और सर एक और बात है सर, ये आज विनीत गर्ग सर कमेंट्री के लिए होना चाहिए।
1: मनोज जी आपको स्पोर्ट्स एक्सपर्ट की जगह एस्ट्रोलॉजर की कुर्सी पर भी बिठाना चाहते हैं, बताएं।
3: अरे आपने धर्म संकट में डाल दिया मुझे। बाकी आपका सवाल?
1: सवाल उन्होंने ये जानना चाहे कि स्पिनर्स को खेलने में भारतीय बैटर्स लगातार फ्लॉप क्यों हो रहे हैं।
3: देखिए ये जो है कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आपको गेंद को मेरिट पर, खैर देखिए ये सारी चीजें हम रटी रटाई चीजें बोलेंगे, मैं तो समझता हूं कमिटमेंट के साथ आप खेलें, ग्रे एरियाज पर काम करें और ज्यादा ज्यादा सोचें नहीं, बस आपको रन बनाने हैं, आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसको पूरा करना है। क्योंकि अब आप ये देखें ना, जिस तरह से आप अपने देश में जितना क्रिकेट खेलते हैं, आपने ज्यादातर क्रिकेट अब बाहर खेला है पिछले कुछ समय से, अगर आप देखें तो इंडिया में आपको वैसा परफॉर्मेंस करने के लिए स्पिनर्स की कमी नहीं है, स्पिनर्स बहुत हैं आपके पास। आपके पास दीप्ति शर्मा से लेकर आपके श्री चरणी हैं और भी कई ऐसे स्पिनर्स हैं। मुझे लगता है एक ऐसा पूल होना चाहिए जो आपको लगातार, जैसे स्पिन बॉलिंग एकेडमी होती है ना, आप वहां पर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा खेलें, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है अगर वही हमारी कमजोरी बन जाएगी तो फिर वही हश्र होगा जो T20 क्रिकेट में हमारा महिला क्रिकेट में हुआ, जो हमारा पुरुष क्रिकेट में भी यही समस्या से रूबरू होना पड़ा है भारतीय टीम को। तो इस पर वाकई युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है और मैं इनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बिल्कुल भारतीय क्रिकेट की दुखती रग पर उंगली रखी है।
4: मैं जानना चाहूंगी वैशाली कि उन्होंने बात करी कि हम स्पिन नहीं खेल पा रहे हैं, बट थोड़ा सा कैप्टन्स पर्सपेक्टिव भी हम यहाँ पर लेंगे। हरमनप्रीत कौर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन है हमारे और अभी जितनी डिफिकल्टीज में टीम खेल रही है, या फिर मैं थोड़ा सा ये कहूँ थोड़ा सा जो कोलैप्स हो रहा है यहाँ पर, कितना ज्यादा प्रेशर आ जाता है एज अ कैप्टन, क्योंकि वो आउट भी हो गई, वहां से स्मृति मंदना जो है उनका रन आउट हो गया, प्रतिका के रन नहीं आए। में भी जब आप डेब्यू करते हो तो थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो एज अ कैप्टन जब आप इन सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए मिडल ऑर्डर में ऊपर आ रहे हो, एक बहुत ज्यादा कंपेटिटिव टीम नहीं है आपके अगेंस्ट, बट एज अ कैप्टन उस समय कोई प्रेशर का रोल रहता है कि जो उन्होंने शॉट मारा और उसके बाद वो आउट हो गई?
0: वैसे कोई, जैसे हमारी हरमनप्रीत कौर खेलती हैं और उन्होंने जैसे मैंने अभी बताया कि 200 प्लस स्कोर भी किया है, तो इस टाइम पे उनका वो प्रेशर हैंडलिंग उनको बहुत अच्छे से आता है। एंड अगर ऐसा है कि कहीं किसी के बैट से, अगर बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेयर की भी गलती है, क्योंकि हम कहते हैं देखने में वो टीम गेम है जब आप फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आप जब बैटिंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल गेम भी बन जाता है, क्योंकि आपके जगह पे वो 10 जो बाहर बैठे हैं वो बैटिंग नहीं करने आएंगे, आप सिर्फ अपनी बैटिंग करोगे, आपको ही ड्राइव वो सिक्स मारना है वहां खड़े होके। तो ये एक इंडिविजुअल के साथ टीम गेम दोनों साथ में चल रहा है, तो आपको यहाँ पे एक तो आपको अपनी टीम को भी लेके चलना है, आपको बॉलर्स को भी लेके चलना है, उसके साथ आपका प्रेशर है कि आपके रन भी नहीं बन रहे, ये एक सबसे दुख वाला कारण भी हो सकता है। और वो कहीं ना हमारी फील्डिंग और हमारे एटीट्यूड में कहीं ना कहीं हमारे फेस पे वो शो भी होता है, और वो हमारे हरमनप्रीत कौर के मेरे को अभी तक वो लगा नहीं, सिर्फ हमारा वो वर्ल्ड कप में लगा था जब हम वो जीते थे, उन्होंने कैच पकड़ा था वहां पे, वो खुशी बाद में नजर आई थी, लेकिन इस ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आज का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना और बताना है कि अपने बैटर्स को कि आप सिर्फ यहाँ पे इस पिच के ऊपर आपको सिर्फ खड़े होना है, पिच पे आपको रन स्कोर करना है, अगर आप बैटिंग पे अगर वहां पे खड़े नहीं होगे तो आप स्कोर कैसे करोगे। और ये बहुत रूट लेवल की बात मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये सभी प्लेयर्स को बहुत अच्छे से पता भी है।
1: फर्स्ट बॉल 20 में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार स्वागत है आपका।
5: नमस्कार सर
1: जी, बताइए।
5: हरियाणा जिला पंजाब जिला फाजिलका से बोल रहा हूँ, कुलदीप सिंह मेरा।
1: जी कुलदीप जी बताएं।
5: सर मैं, मेरा सवाल ये है कि सिर्फ स्मृति मंदना और वैशाली के ऊपर टोटल डिपेंड है अपनी टीम, जो मिडिल ऑर्डर है उसको भी चाहिए ना कुछ करना, पिछले मैच में हमारे 10 ओवर में

0: एक रन और 10 ओवर में 58 रन।
1: जी बिल्कुल, मध्य क्रम की बात कर रहे हैं और हमने इस पर चर्चा भी की है कि भारतीय फुलमाली को स्टेप अप करना पड़ेगा। प्रतिका रावल की तरफ से रन नहीं आ रहे हैं और खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी संघर्ष करती नजर आ रही हैं। लेकिन मनोज, थोड़ी चर्चा हांगकांग की भी कर लेनी चाहिए। हांगकांग के लिए जो बैटर नताशा माइल्स हैं और जो बॉलर कैरी चैन हैं, इस साल की बेस्ट परफॉर्मर रही हैं। नताशा ने इस साल खेली 25 पारियों में 39.28 की औसत से 784 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 97.14 का है, इसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 100 रन रहा था, जबकि चैन ने 26 मुकाबलों में 4.81 की बेहतरीन इकोनॉमी से 39 विकेट चटकाए हैं और 15 रन देकर 5 विकेट उनका बेहतरीन प्रदर्शन है। और किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी हांगकांग की तरफ से?
2: देखिए, मरियम बेबी हमेशा आकर्षण का केंद्र रहती हैं। नाम ही उनका इतना आकर्षक है कि हर कोई देखना चाहता है कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगी, गेंदबाजी भी करती हैं। कैरी चैन, अब देखिए आप, उनके पास दो दो ऐसे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हैं जिसे आप पुरुषों के क्रिकेट में चाइना मैन क्रिकेट बोलते हैं, उस तरह से उनके पास कैरी चैन भी है, कैचिंग चैन, और ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको खेलने के लिए आपको पूरी तैयारी करने की जरूरत होती है। और आप जब तक अभ्यस्त नहीं होते, क्योंकि उनकी गेंद कौन सी ऑफ से टिप्पा बढ़कर अचानक अंदर आ जाए, आपको उसका पूर्वानुमान लगाना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, समय बहुत कम मिलता है। इनके स्पिनर्स में मैंने एक और चीज देखी है कि कईयों के पास गति बहुत ज्यादा है, आपको बिल्कुल समय नहीं देती हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि 2017 में जिस तरह से इन्होंने ईस्ट एशिया कप जीता, और उसके अलावा 2024 में भी इन्होंने, इनकी एक प्लेयर थी मारिको हिल, जिन्होंने सेंचुरी बनाने वाली वो पहली खिलाड़ी साबित हुई थी। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि इस टीम को अगर एक्सपोजर मिलता है, लगातार मौके मिलते हैं, तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराएंगी आने वाले वर्षों में।
1: 108 मुकाबले खेले हैं हांगकांग ने, 65 में जीत, 40 में हार, 2 टाई और 1 में परिणाम नहीं आया है, और 222 रन पर 1 विकेट इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। मालदीव के साथ 11 फरवरी 2024 को ये प्रदर्शन आया था।
3: वैशाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मारिना लैम्पलो जो है, जो इनकी ऑलराउंडर है, कहीं ना कहीं आज थोड़ा टफ कंपटीशन देंगी शफाली और स्मृति मानधना को, क्योंकि एशिया कप के ही पिछले मुकाबले में 4 विकेट चटका चुकी हैं, 22 रन इन्होंने मारे थे, स्ट्राइक रेट काफी अच्छा था। तो आपको लगता है कि आज जो हमारा ओपनिंग पेयर है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये लेके आने वाली है?
4: मारिना के साथ साथ मुझे लगता है कि कैरी चैन भी लेके आएंगे, क्योंकि वो रिस्ट बॉलर हैं और हमारे इंडियन टीम में रिस्ट बॉलर बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। और रिस्ट बॉलर में सबसे बड़ी खास बात यह है कि वो जब एयर में बॉल जाते हैं ना, तो जब वो टप्पा खाती है तो बहुत जल्दी अपनी दिशा बदल देती है। और इस तरीके के जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं बैटिंग और जो स्पिनर्स पे वर्क नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला आज का। एंड उसके साथ साथ मरियम की अगर बात करें तो वो सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है मिडल ऑर्डर पे, जो हम लैक कर रहे हैं इंडियन टीम के, हमारी जो इंडियन टीम है वो लैक कर रही है। वहीं हांगकांग की टीम में मरीना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके साथ हमारे पास एक और रुचि था, बहुत अच्छी स्पिनर है, लेग ऑफ स्पिन ब्रेक करती है, और इन ये सबसे मेन है, कैरी और मरीना दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं इंडियन टीम के बैटर के लिए, और उनपे खास तरीके से उनको देख के, बॉल देख के खेलने की जरूरत है, और उसके साथ साथ उनको अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना बहुत जरूरी है। आज के सबसे मेन है प्रतिका रावल एंड स्मृति मंदना, जो स्पिनर पे ही लास्ट टाइम आउट हुए थे, और हमारी हरमनप्रीत कौर भी हुई थी।
1: मनोज, इनमें से बहुत सारी ऐसी प्लेयर्स होंगी हांगकांग की जिन्होंने भारतीय स्टार्स खिलाड़ियों को देखकर क्रिकेट की तरफ अपना मन बनाया होगा, चाहे हरमन को देखा होगा, स्मृति को, शेफाली को, इनके सामने खेलना एक तो उत्साह बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं दबाव में भी आते हैं कि इतने बड़े स्टार्स हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, दुनिया भर की लीग में खेलते हैं, इस क्या कुछ चल रहा होगा हांगकांग के खिलाड़ियों के मन में?
2: देखिए, जिनके साथ आप तस्वीर खिंचवाने में अपने आप को आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आपके लिए वो अद्भुत लम्हे होते हैं, उनके साथ खेलने का मौका मिले तो उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, है ना। तो बस कुल मिलाकर यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम में खासकर जो विमेन स्पिनर्स हैं वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। आपने ओपनर्स का जिक्र किया, बस मैं कहूंगा कांति गौड़ और नंदिनी शर्मा, उनको मैं देखना चाहूंगा कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बने थे ये दोनों खिलाड़ी, खासकर इंग्लैंड के टूर पर जहां कंडीशंस हमारे फेवरेबल

0: थी वो ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए थे जितना इनमें मादा था।
1: जी हाँ, परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन कहते हैं कि संघर्ष से संकल्प कब हारा है, और आज चाहेगी भारतीय टीम की एक बेहतरीन प्रदर्शन करें, खास करके एक बढ़िया टोटल बनाएं। वक्त हो चला है फर्स्ट बॉल 20 के समापन का। वैशाली जी, आपका, मनोज जी आपका, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: थैंक यू।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: महिलाओं का एशिया कप 2026 गतिमान है और आज की शाम एक तरफ भारतीय खेमा जो थाईलैंड के विरुद्ध झुका नहीं है और वैसे भी एशिया कप के इतिहास में देखें तो ये खेमा ज्यादा रुका नहीं है और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जो अभी पनप रही है जो बहुत कुछ सीखने के लिए तैयार है, व्याकुल है, तत्पर है। हांगकांग का ये खेमा एक बड़ी चुनौती के लिए तैयार है। मजे की बात ये कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे खेला जाने वाला ये मुकाबला जो दो टीमों के मध्य है उनके बीच में तुलनात्मक तौर पे एक ही दृष्टिकोण रहेगा, वो ये कि दोनों का आमना सामना पिछली बार थाईलैंड के विरुद्ध हुआ था जहां भारतीय खेमे ने थाईलैंड के विरुद्ध एक कमाल की शुरुआत के साथ एक बहुत बड़ी जीत 94 रन की जीत हासिल की थी। तो वहीं हांगकांग का खेमा थाईलैंड से बहुत करीबी मार्जिन से सिर्फ 6 रनों के आंकड़े से शिकस्त का सामना कर कर आया। नमस्कार, स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए, इस कड़े मुकाबले के लिए। बता दें आपको कि ये 10वां संस्करण है एशिया कप का और महिलाओं के इस एशिया कप में भारतीय टीम ने 7 दफे चैंपियन बनने का दारमदार अपने नाम किया। तो वहीं एक दफे श्रीलंका, एक दफे बांग्लादेश ने ये गर्वांगित करने वाला अवसर जिया भी है और उस लम्हे को, उस पल को अपनी दृष्टि से देखा भी है। आज इस मुकाबले का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए हम सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं हमारी टीम के साथ। हमारे साथ शमा सनी रहेगी जो स्कोरर की भूमिका में है, हमारे स्टैटिस्टिशियन के तौर पे मनोज कुमार। इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हिंदी में आपको सुनाने के लिए मैं आयुष शर्मा और अंग्रेजी में कहानी को बयां करने के लिए मेरे मित्र, मेरे गुरु भाई और आज अपने पदार्पण के लिए तैयार, स्वागत रोहित गांगुली।
2: Thank you so much, Ayush, and of course it's a great match that's going to happen definitely for India. It's going to be a challenge that will be worth noting because obviously the talk of the town is that despite a convincing victory against Thailand, what happened in the middle order? And of course at the other end for Hong Kong as well, it's a tough challenge. They came close against Thailand, but at the same time they'll be hoping to finally cross the line and create a massive upset. But then keeping aside the story of ifs and buts, we'll move straight to the game.
1: चलिए तो आपको बता दें कि भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और उसका कारण ये कि हांगकांग के खेमे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इकरा सहार गेंदबाजी की शुरुआत करेगी। 82 मुकाबले कुल मिला के खेले हैं, 53 विकेट उनके नाम है सर्वाधिक। यदि आप इनका सुनना चाहें तो हम आपको बता दें कि 4 विकेट चटके थे महज 4 रनों को खर्च करते हुए। इससे पता चलता है कि कितनी बेहतरीन ये गेंदबाज है, लेकिन उम्मीदों का पहाड़ आज भारतीय खेमे पे होगा। पिछले मुकाबले की जो बड़ी जीत प्राप्त की थी थाईलैंड के विरुद्ध, क्या उसी तरीके का सफर यहाँ जारी होगा? एक और चीज जो देखने लायक है हमारे लिए, सुनने लायक हमारे दर्शकों के लिए, कि क्या भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर आज कार्य करेगा। बहरहाल शुरुआत भारतीय ओपनर्स के साथ रहने वाली है। भारत की एक तरफ स्मृति, जिनसे आप बहुत ज्यादा उम्मीदें करते रहते हैं, शेफाली वर्मा का पिछले मुकाबले में जो अर्शद के पारी को खेलना था उसने सभी को प्रभावित किया था। उसी बीच इकरा पहली गेंद डालने के लिए तैयार है। लो फुल टॉस के साथ गेंदबाजी की शुरुआत, बहुत ज्यादा गति नहीं थी, पैड्स की तरफ गेंद थी जिसे सीधे बल्ले से खेल दिया गया था। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पे मुकाबला खेला जा रहा है और स्मृति मंधाना ने पहली गेंद को बहुत सम्मान दिया है और अच्छी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी आज करनी पड़ेगी। जो ट्रैक है, जो पिच है, उसमें समांतर घास हमें यहाँ पे नजर आती है। भारतीय टीम के स्पिनर्स की वैसे ही हमेशा तारीफ रहती है, चर्चा रहती है, लेकिन यहाँ इस पिच को देख के ऐसा लग रहा है कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद है। दूसरी गेंद ड्राइव कर दिया गया है कवर्स की तरफ, दो फील्डर्स को भेजती हुई गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या फील्डर जीतेंगे? बिल्कुल जीते हैं। आखिरी क्षणों पे जब कम से कम 2 या 3 फीट का फासला बचा था गेंद और बाउंड्री के बीच, एक अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया और कवर्स की दिशा में एक अच्छी फील्डिंग के चलते यहाँ 2 रन बचाए गए हैं। रोहित, शुरुआत में आपको चाहिए ऐसे फील्डिंग एफर्ट्स और बीबी जो पिछले मुकाबले में कप्तानी कर रही थी उन्होंने ये फील्डिंग एफर्ट दिखाए हैं।
2: Absolutely, I think Mariam Bibi comes in with a lot of experience and that's why you would expect such spectacles from her.

0: थाईलैंड हांगकांग के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, थाईलैंड ने महज 6 रनों से उस मुकाबले को अपनी गिरफ्त में किया। फिर तीसरे मुकाबले के तौर पर भारत थाईलैंड के सामने आई थी, भारत ने 94 रन के एक बहुत बड़े आंकड़े के साथ उस मुकाबले को जीता था। पाकिस्तान और थाईलैंड के बीच की टकरार पाकिस्तान 35 रनों से जीता था और आज भारत हांगकांग आमने सामने है। ये मुकाबला गतिमान है, याद रखिए 5 सितंबर को एक और मुलाकात होगी जहां भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हम यहीं आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो से आपके लिए लेके आएंगे। उसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, मरियम बीबी नई गेंदबाज के तौर पर आई है, 109 मुकाबला 76 विकेट अपने नाम है। सर्वश्रेष्ठ जो है वो 8 रन देके 4 विकेट निकालना है और इकोनॉमिकल गेंदबाज है, दूसरी ऐसी गेंदबाज आज की शाम की जो तेज गति से गेंदबाजी करती है। गेंदबाजी की शुरुआत कर रही है अराउंड द विकेट, पहली गेंद पे स्मृति मंदाना ने ड्राइव कर दिया है, फील्डर वहां पे मौजूद नहीं और स्वागत किया है मरियम का एक चौके के साथ, चेहरे पे स्मृति की मुस्कुराहट है। अमूमन कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्या स्मृति की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख के शैफाली वर्मा का बल्ला भी आग उछलेगा। अपेशली खेला गया था एक हाफ वॉली जिसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है, ड्राइव करने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, टाइमिंग इतनी बेहतरीन कि इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए ही नहीं था। पहली गेंद पे किसी भी गेंदबाज को यदि चौका पड़ जाए तो बल्लेबाज का हौसला न सिर्फ चरम पे होता है बल्कि मरियम गेंदबाज के तौर पे किस तरीके की वापसी करेंगी ये भी देखना पड़ेगा। अगली गेंद ओवर की ये दूसरी गेंद है, अभी भी अराउंड द विकेट गेंदबाजी की गई है, फुलिश डिलीवरी थी जिसको सीधे बल्ले से खेला स्मृति ने, कोई रन उसे मिलेगा नहीं और क्रीज से ज्यादा दूर गेंद जाके समाप्त नहीं हुई थी। एक और चीज जो यहां समझी जा रही है वो ये कि एक छोर से तेज गति के गेंदबाज को गेंदबाजी कराई जा रही है तो दूसरे छोर से निरंतर तौर पे हांगकांग का खेमा धीमे गति के गेंदबाजों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत के पास दाएं और बाएं हाथ का एक कॉम्बिनेशन है, एक संतुलन है, तो दूसरी तरफ हांगकांग की टीम बिल्कुल नहीं चाहती, ये कतई नहीं चाहती कि भारतीय बल्लेबाज गति से रूबरू हो जाए। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, एक और फुल टॉस जिसको अपने रीच को थोड़ा बढ़ाया स्मृति ने, फिर बल्ले का एक संपर्क जरूर हुआ लेकिन पॉइंट की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद थे, एक अच्छा क्षेत्र रक्षण, रन कोई मिलेगा नहीं। दो लगातार डॉट गेंदे आ चुकी है, भारत का स्कोर 30 रन पहुंच चुका है, पांचवा ओवर गतिमान है, स्मृति के बल्ले से 22 रन आ चुके हैं, कुल मिला के 21 गेंदों का सामना उन्होंने किया है और उसी के चलते 6.5 से ऊपर भारत का रन रेट फिलहाल गतिमान। मरियम ओवर की चौथी गेंद के साथ आ रही है, अभी भी अराउंड द विकेट है, एक फुल लेंथ डिलीवरी जिसमें स्मृति ने पहले ही कदमों का इस्तेमाल कर लिया था और पॉइंट की दिशा में सीयू ने गेंद को फील्ड किया, रन कोई आएगा नहीं। लगातार 3 डॉट गेंदे इस वर्ष 2026 में यदि हम देखें तो 65 कुल मिला के ऐसे मौके आए हैं जब मंदाना ने उस स्कोर को पार किया, गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया है, यानी कि चौके लगाए हैं 65। ये सत्र काफी अच्छा रहा है उनके लिए 2026 का। ओवर की पांचवी गेंद, विकेट कीपर थोड़ी सी आगे आई है, स्लॉग स्वीप कर दिया, फील्डर की मौजूदगी यहां से कहीं नजर नहीं आ रही, कुछ टप्पों के बाद ही सही लेकिन गेंद मिड विकेट की दिशा को पार करेगी, एक और चौका आएगा और स्मृति के बल्ले से अब रनों की संख्या को बढ़ा के 26 कर लीजिएगा, भारत का स्कोर 34 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर में सिर्फ एक ही गेंद बची है, इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ की थी लेकिन वो कवर ड्राइव की थी, उसे ऑफ साइड में खेला था, यहां ऑन साइड में जो मौका मिला उसे पूरी तरीके से भुनाते हुए एक और चौके की प्राप्ति कर ली है। पूरी तरीके से हताश हो चुकी है ऐसा लग रहा है गेंदबाज मरियम बीबी। स्मृति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि T20 में देखें तो 173 मुकाबले खेले हैं और ऐसा लग रहा है कि सफर जल्दी 200 से ऊपर का हो जाएगा। उसी बीच पांचवें ओवर की आखिरी गेंद धीमी गति की गेंद थी, फिर स्लॉग हिट लगाई है, फील्डर के लिए मशक्कत होगी, लॉन्ग ऑन पहुंच नहीं पाएगी, गेंद पहुंच जाएगी बाउंड्री के पार, एक कमाल का ओवर जिसमें 3 बाउंड्रीज आई है, 3 चौके लगे हैं, भारत ने 12 रन का इजाफा किया है। ओवर की समाप्ति 5 के बाद 38 बिना नुकसान भारत का स्कोर।
1: एग्जैक्टली द एक्सेलरेशन दैट इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड राइट नाउ श्रुति मंदाना हैज गिवन देम दैट एंड यू टॉकिंग अबाउट दिस दैट इन द लास्ट ओवर दैट बाय सीइंग श्रुति मंदाना विल शफली वर्मा इवेंचुअली डिसाइड दैट दिस इज हर टाइम एज वेल टू ट्राई एंड ओपन अप, बट अगेन श्रुति मंदाना दिस इज द काइंड ऑफ बैटिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हर एंड दैट इज व्हाई इट्स ऑल राइट इफ शी इज टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम बिकॉज द काइंड ऑफ डेंजर दैट श्रुति मंदाना कैन try and pose the moment she gets into rhythm that will look very very deadly. It's the last over of the power play and Marina Lamplough will be coming back, went for 7 runs in the first over and India slowly and steadily now growing in stature. That was the last boundary once again just kind of getting for that half volley and Shruti Mandana the way she's striking the ball once again gets down on her knee, opens that front foot and gets that lovely slog sweep into play. The Indian fans are absolutely exhilarated. Marina Lamplough, she'll be going over the wicket. Shafali Verma, the last 6 balls with the field restrictions on. This time bowls it shorter and Shafali Verma happy enough to push it.

0: स्कोरर हैं, उन्होंने हमारे से साझा किए हैं और हम आपको बताए देते हैं कि पावर प्ले की समाप्ति तो हो चुकी है, फील्डर्स बाहर हैं, लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव भारतीय बल्लेबाजों पर नजर नहीं आ रहा। ओवर की तीसरी गेंद जिसे खेल दिया गया था, लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद, सिर्फ एक सिंगल। दाएं बाएं हाथ की ये जो बल्लेबाजी है, ऐसा लग रहा है कि हांगकांग के खेमे के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कभी आप ऑनसाइड में फील्ड में बदलाव करते हैं, जैसे ही शेफाली बल्लेबाजी करने के लिए आती है, फिर ऑफसाइड की फील्ड को आपको अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि स्मृति मंधाना जब बाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है, शेफाली वर्मा दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती है और गजब की स्ट्राइक रेट रही है। 12 गेंदों में 28 रन शेफाली के बल्ले से आ चुके हैं। एलिसन के इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ हुई थी, दूसरी गेंद डॉट थी, तीसरी गेंद पे सिंगल आया। हालिया रन रेट भारत की बराबर 10.00 की चल रही है और भारत के विकेट के लिहाज से अगर देखें तो आर्यभट्ट का तोहफा मिला है, 0/0। उसके अतिरिक्त हांगकांग के पास कोई और विकल्प नहीं। शेफाली वर्मा 7 रन दूर, तीसरी भारतीय बल्लेबाज बन जाएगी अगर 3000 रन पूरे करती है तो। चौथी गेंद बाहरी किनारा लगते लगते रहा था, आश्चर्य चकित बहुत हैरानी से उस गेंद को लिया था शेफाली वर्मा ने, क्योंकि ये एकमात्र गेंद इस पारी में नजर आई जो अच्छे खासे उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी। पावर प्ले की कहानी बहुत रोचक रही, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया गया था, एक तरफ स्मृति मंधाना की तरफ से तो दूसरी तरफ क्रीज को बहुत अच्छी तरीके से भापा, क्रीज के अंदर जितना रह के खेला जा सकता था वो खेलने की कोशिश शेफाली की थी। ओवर की पांचवी गेंद हल्की सी हरकत, बाहरी किनारा एक बार फिर बचा है। कोचेस हमेशा आपको बताते हैं कि चौथे या पांचवें स्टंप के ऊपर गेंदबाजी रखिए, हमेशा आपका संतुलन बढ़िया रहेगा। दो लगातार डॉट गेंद, क्या शेफाली को किसी भी प्रकार का कोई दबाव होगा? जिस तरीके का इनका तजुर्बा रहा है, जैसे पिछले मुकाबले की पारी और अभी का सिलसिला रहा है, ये कहना पूरी तरीके से गलत हो सकता है। सातवें ओवर की आखिरी गेंद, इस बार थोड़ी सी शॉर्ट रखा, कदमों का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया है, कवर सर्कल के भीतर मौजूद भी है और डॉट। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, ओवर समाप्त हो जाएगा। 7 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 65 रन बिना किसी नुकसान के, और 7 ओवर्स के बाद भी अगर भारत का स्कोर इतना कमाल का है, विकेट कोई गया नहीं है, रन रेट 9.25 के आसपास की है, तो रोहित ये कहना ज्यादा गलत नहीं होगा कि आज चुनौती बहुत बड़ी है, हांगकांग को शायद 170 भी चेस करने पड़ जाए।
1: The captain Natasha Myers, she was making it very, very clear that they are ready to chase 140 or 150 looking at the surface. But the kind of start that now India has, now of course, now people might point out that they have had a middle order collapse in the last game. But make no mistake, it's a one-off. It's cricket. It can happen. But then India has got immense depth. They've got Richa Ghosh, they've got Pratika Rawal, they've got Harmanpreet Kaur to come, they've got Bharti Fulmali as well. So a lot of batting to come in. And if all of them start striking, they might be targeting something close to 160 or 170. Ruchita Venkatesh comes into the attack, 75 matches, 37 wickets, best of 3/8, economy of 5.01. And you would expect someone like Ruchita to try and bowl it as slowly as possible, because the moment you start giving these two a bit of pace, they'll start expressing themselves. And that is why you want to keep it slow, you want to keep it low. Ruchita, replacing Marina Lumpdom, will be going round the wicket to Shriti Mandana, bowls it fuller. And this is where Shriti thrives, plays it wonderfully through long off for another boundary. What a welcome there for Ruchita. It felt like that Shriti's almost caressed that one. And she's cruising right now at jet speed. A lot fuller. That was that moon ball coming into play. And Shriti, despite the mid-off being inside the circle, she had no hesitation of playing it adjacent to her. That is an incredible shot. That's the confidence that Shriti Mandana has. 39 of 28 and she is looking in great great nick, exactly like people would expect Mandana to go. Comes down the track, takes it on the full, and once again it's through the long off area that she'll find another boundary. Back to back fours, and Ruchita Venkatesh is being clobbered left, right and center. Couldn't land the ball. Shriti once again coming down the track, was in total control and ensured the fact that she's sending it all the way to the boundary line. No problems whatsoever. It's all about reaching to the pitch of the ball. And you can see the frown now intensifying on the face of Natasha Myers. And that's because these two, they have turned this game on its head. They expected a bit of a good start. And they did get a controlled start, slightly shorter. And Mandana plays it straight to the point fielder. Won't get anything for that. Ruchita Venkatesh will be really happy to get a dot ball after you get struck for two back-to-back fours. Of course, your confidence, it kind of nosedives into a spiral, which you will not like. And especially when you're against one of the top batters in the international women's circuit. Shriti drives it and will go all the way to the deep cover fielder. And Shriti Mandana will by that time get a single. Now she moves on to 44 of 31.

0: wicket fielder. Another ball to go. India now 74 for none from 7.5. One more ball in this over, run rate of 9.45. India is absolutely enjoying themselves, and that's because the Sisters of Destruction are in great rhythm. Dances down the track, takes it on the full, doesn't really get the connection that she was hoping for, and Shafali Verma's innings will have to come to an end. Ruchita Venkatesh provides the breakthrough that they were looking forward to, and this is a massive one. The fact that Shafali, trying to dance down the track, wanted to take it as a half volley, the full toss completely derailed her calculations, and unable to give that full extension of the arms, eventually ended up skying the ball. The fielder at long on, coming straight forward and taking a very good catch, and eventually had great control in the follow through as well. It is Marina Lamplough with the take. And Ruchita Venkatesh, despite being smacked for two fours, the first two balls came back very strongly. And with this, we come to the end of the 8th over. Shafali Verma goes for 28 of 17. India 74 for 1 at the end of 8.
1: बहुत ज्यादा विशेष नहीं था उस गेंद में, एक फुल टॉस गेंद, और विल्ला ही हमें कोई ऐसा नजारा नजर आता हो जब बाउंड्री रोप्स के पास शेफाली वर्मा इस प्रकार की गेंदों को ना पहुंचा पाए। एक कमाल का कैच मरीना ने किया था जो कि लॉन्ग ऑन की दिशा में मौजूद थी। कम से कम 10 से 15 कदम उन्हें दौड़ लगानी पड़ी, फिर अपने बाईं तरफ छलांग लगाते हुए उन्होंने ना सिर्फ कैच को पकड़ा बल्कि ये सुनिश्चित किया कि जब उनका शरीर जमीन से जाके टकरा रहा हो तब भी गेंद उनकी गिरफ्त में रहे। 8 ओवर्स की समाप्ति, भारत का स्कोर 74 रन 1 विकेट के नुकसान पे। स्मृति मंदाना 44 रन पे बल्लेबाजी कर रही है, 31 गेंदों का सामना किया है, उनके बल्ले से अब तक 8 चौके आ चुके हैं, छक्का अब तक उन्होंने कोई लगाया नहीं, कोई 6 रन उनके बल्ले से आए नहीं है, और 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट जो किसी भी बल्लेबाज के लिए लाजवाब माना जाता है। ग्रुप ए का ये मुकाबला है, भारत हांगकांग आमने सामने, और अभी तो कहानी बहुत बची है। प्रतिकर रावल अपना दूसरा मुकाबला पदार्पण किया था थाईलैंड के विरुद्ध, 22 उस मुकाबले में बनाए थे, हालांकि थोड़ी सी धीमी शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन जब कोई खिलाड़ी अपना पहला मुकाबला खेल रहा हो तो अमूमन उम्मीद करता है कि बस बल्ले से रन आते रहें। जिस तरीके से विकेट गिरा था शेफाली वर्मा का, निश्चित सी बात है कि अपने आप से थोड़ी सी नाखुश होगी। एक फुल टॉस गेंद को सीधे फील्डर के हाथ में थमा देना, अपने विकेट को इतने सस्ते में दे देना, ये बहुत समझदारी का विषय नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट की कहानी कुछ इस तरीके की रहती है। आपको मजबूरन कुछ बड़े शॉट खेलने पड़ते हैं, और अगर आपकी टीम का लय बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको इस प्रकार की शॉट्स की उम्मीद और आकांक्षाएं हमेशा रखनी पड़ेगी। अपने साथी खिलाड़ियों के साथ भी और बतौर ओपनर भी आप चाहते हैं कि एक पुख्ता शुरुआत आपके खेमे को मिले। 9 ओवर की पहली गेंद को लेकर आ रही है इकरा, जो कि दाएं हाथ की गेंदबाज है, अराउंड द विकेट पहली गेंद की थी, उसे सिंगल के लिए खेल दिया है स्मृति ने, और अब प्रतिका को स्ट्राइक मिलेगी जो आज की शाम इस मुकाबले में पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहेंगी। उनके लिए फील्डिंग में परिवर्तन किया गया, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पे है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे है। अभी तक देखा जाए तो 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, इकरा ने 2 ओवर्स कर लिए हैं जिसमें 9 रन उन्होंने खर्च किए थे। तीसरा ओवर उनका गतिमान है, इसकी एक गेंद भी हो चुकी है। उनसे उनके अतिरिक्त कैरी, मरीना, मरियम, एलिसन और रुचिता कुछ वो खिलाड़ी जिन्होंने गेंदबाजी में अब तक अपने हाथ को आजमाया है। प्रतिका के लिए छोर में परिवर्तन किया है, ओवर द विकेट आते हुए अपनी पहली गेंद को प्लेस किया था और कट करते हुए पॉइंट की दिशा में खेला। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। प्रतिका अभी भी खाता खोलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, हालांकि सिर्फ एक गेंद का सामना किया है और उस गेंद में हल्की सी हरकत नजर आई थी। वैसे भी आज के इस ट्रैक पे उम्मीद की जा रही थी कि तेज गेंदबाजों के लिए मदद हो, लेकिन वैसा कुछ नजर नहीं आया है। ना ही गेंद का उछाल बहुत अच्छा रहा है, ना ही गेंद ने उतनी ज्यादा हरकत की है। ओवर की तीसरी गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसे पुल करने की कोशिश, हालांकि संपर्क ठीक ठाक सा, फील्डर से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और 30 यार्ड के घेरे से बाहर जैसे ही गेंद जाएगी, प्रतिका को रन निकालते हुए अपना खाता खोलने का अवसर मिलेगा और रनों की गणना 2 होगी तो भारत का स्कोर आगे बढ़कर 77 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहुंच जाएगा। इकरा ने इस ओवर में 3 गेंदों में अब तक 3 रन खर्च किए हैं। सतहत्तर 1 विकेट के नुकसान पे भारत ने पावर प्ले की समाप्ति के बाद अपना पहला विकेट खोया था। प्रतिका अभी भी बल्लेबाजी कर रही है, एक फुल टॉस गेंद है, तीसरी गेंद का सामना किया है, ड्राइव कर दिया गया कवर्स और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, अच्छा खासा प्रोटेक्शन है। और अमूमन वो जो 6 ओवर्स की कहानी होती है उसकी समाप्ति के बाद आपको फील्डर्स घेरे के बाहर नजर आते हैं और इस वजह से ज्यादा दिक्कतें होती नहीं है फील्डर्स को गेंद को रोकने में, और विकल्प ढूंढने पड़ते हैं बल्लेबाजों को, या तो गैप ढूंढने पड़ते हैं या फिर बाउंड्री रोप्स के सीधे बाहर गेंद को धकेल दीजिए 6 रन के लिए। स्मृति बातों ही बातों में 32 गेंदों पे 45 पे पहुंच चुकी है, फिलहाल वही स्ट्राइक पे हैं और इस वजह से छोर में परिवर्तन किया। ऑफ साइड पूरी तरीके से पैक है, एक खिलाड़ी कवर पे

0: बेल्जियम के रक्षा मंत्री तेओ फ्रांकन के साथ नई दिल्ली में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के दौरान कही। भारत ने ब्रसेल्स में डिफेंस अटैशे नियुक्त करने का फैसला किया है। बेल्जियम ने इस साल की शुरुआत में नई दिल्ली में डिफेंस अटैशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण पर श्री जॉर्ज ने कहा कि उसे पिछले साल अप्रैल में बेल्जियम के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था और तब से वो बेल्जियम की जेल में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे।
1: मेकिंग इंडिया $30 trillion इकोनॉमी।
2: भारत 2047 तक $30 trillion की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश अपनी आर्थिक यात्रा के अहम दौर में है। पहली तिमाही में 7.8% का सकल घरेलू उत्पाद बहुत उत्साह

0: भविष्य के लिए बड़ी उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में अनिश्चितता और भारी उथल पुथल के इस दौर में ये बड़ी उपलब्धि है।
1: अराउंड द वर्ल्ड इज नो मीन अचीवमेंट।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत हमेशा से ये कहता आया है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है और इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। श्री जयशंकर ने यूक्रेन के कीव में वहां के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात के बाद ये बात कही। श्री जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए गए बयान को दोहराया। श्री मोदी ने कहा था कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करना होगा। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए भारत की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। बाद में विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के उपायों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों और व्यापार विभाग के रणनीतिक योजना और समन्वय समूह की सचिव एलेनोर जेन लॉसन से मुलाकात की। दोनों ने द्विपक्षीय हितों से जुड़े मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। नेपाल तिब्बत में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की। तेज बारिश के कारण जौनपुर, सोनभद्र, वाराणसी, पीलीभीत, चित्रकूट और चंदौली में आज स्कूल बंद रहे। इस बीच मौसम विभाग ने कल मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तेज बारिश का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। सरकार ने आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कल से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों को एक साथ लाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारत इनोवेट्स पहल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस पहल का उद्देश्य देश के अनुसंधान और विकास आधारित डीप टेक नवाचार तंत्र को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना और सहयोग के अधिक अवसर तैयार करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: ये आकाशवाणी है। दुबई में महिला टी20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक

0: भारत ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। हांगकांग ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अनाहत सिंह लंदन स्क्वाश क्लासिक टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। जूनियर विश्व चैंपियन अनाहत ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम की नील गिलस को 2-1 से हराया। किदाम्बी श्रीकांत और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने पुरुष सिंगल्स में कनाडा के विक्टर लाई को हराया, जबकि सात्विक और चिराग की पुरुष डबल्स जोड़ी ने फ्रांस के क्रिस्टो पोपोव और टोमा जूनियर पोपोव की जोड़ी को हराया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रेस्टो को हार का सामना करना पड़ा। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन कल जन्माष्टमी के भव्य उत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि में तैयारियां जोरों पर हैं। मथुरा में पहली बार कल जन्माष्टमी के मौके पर 500 द्रोण आकाश में भगवान कृष्ण के जन्म और उनकी विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप से प्रदर्शित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जन्माष्टमी समारोह में भाग लेने के लिए मथुरा पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने आज श्री स्वामी हरिदास सभागार का उद्घाटन किया और 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्री भगवद गीता में दी गई श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी कठिन समय में सही निर्णय लेने और नैतिक मूल्यों पर दृढ़ रहने की प्रेरणा देती हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
2: सेंसेक्स 417 अंक गिरकर 76,153 पर बंद हुआ। निफ्टी 41 अंक की गिरावट के साथ 23,873 पर रहा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 49 पैसे मजबूत होकर 94.49 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। बेल्जियम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन किया। भारत और बेल्जियम ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने और सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर हासिल करने में एमएसएमई के योगदान की सराहना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री मोदी की अपील का स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 23 जिले बाढ़ की चपेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi and Belgian counterpart Bart De Wever call for stronger strategic partnership. Belgium backs India's fight against terrorism. India and Belgium sign pact on defence cooperation, agree to double bilateral trade in next 5 years and enhance cooperation in fields of semiconductors, critical minerals and advanced technologies. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal hails MSMEs for achieving 7.8% GDP growth in previous quarter. Heavy rain and release of water from barrages caused floods in 23 districts of Uttar Pradesh. Prime Minister takes stock of situation in Varanasi. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls on Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kyiv welcomes Prime Minister Modi's call to end Russia-Ukraine war. And in women's cricket, Group A match underway between India and Hong Kong in 2020 Asia Cup in Dubai. And now the news in detail. India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both the leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India

0: you for the benefit of our listeners. The two leaders have acknowledged the enduring importance of the diamond trade linking Antwerp and Mumbai and Surat and agreed to further strengthen this historic.
1: ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, क्या आने वाली कुछ और गेंदों में ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रेट स्मृति मंदाना के पास रहेगी? क्या हरमनप्रीत कौर का ये फैसला होगा कि वो ज्यादा स्ट्राइक स्मृति मंदाना के लिए रखें? इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद एक बाउंस के साथ हरमनप्रीत ने गेंद को बाउंड्री रोप के पार धकेल दिया और अपने बल्ले से एक चौका निकाला है। इस टूर्नामेंट के लिहाज से 127वां चौका हमें नजर आया है। 185 रन 3 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर। पहले ही कदमों का इस्तेमाल कर लिया था, गेंद को टप्पा खाने का अवसर ही नहीं दिया। उस गेंद को फुल टॉस बनाते हुए बाउंड्री रोप्स के पार पहुंचाते हुए अपने बल्ले से आज के इस मुकाबले का, अपनी पारी का एक और चौका दर्ज कराती हुई नजर आई है। 7 गेंदों में 10 रन अब हरमनप्रीत के बल्ले से हो चुके हैं। स्मृति 120 पे बल्लेबाजी कर रही है। 19वें ओवर की चौथी गेंद, हरमनप्रीत ने उसे हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज की तरफ ही ऑन साइड में खेल दिया था। कोई रन मिलेगा नहीं। इस ओवर में मरीना ने अब तक 6 रन खर्च किए, एक चौका और 2 रन इसके अतिरिक्त बहुत महंगी आज साबित हुई है। एक गेंदबाज यदि एक T20 फॉर्मेट में 40 से ऊपर रन खा ले

0: तो फिर आप कह लीजिए कि शाम आपके पक्ष में नहीं है। कहानी अभी समाप्त होगी। हरमनप्रीत का विकेट मिड विकेट की दिशा को पार करेंगे, ऐसी अपेक्षा और उम्मीदें हम सभी की थी जब बल्ले से गेंद का संपर्क हुआ, लेकिन आखिरकार मरीना के खाते में दूसरी सफलता आज की शाम की और हरमनप्रीत कौर एक और फुल टॉस गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके क्रीज से बहुत परे आने के बाद भी बाउंड्री रोप्स के पार नहीं पहुंचा पाई। जहां लगता है कि कहानी में भारतीय टीम नीले रंग को रचती रहेगी, लिखती रहेगी, वहीं हांगकांग का खेमा अचानक से वापसी करता है। हरमनप्रीत कौर का विकेट फिर सस्ते में गया, 9 गेंदों पे 10 रन उनके बल्ले से आए थे और भारतीय टीम की इस पारी को एक झटका जरूर लगा, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में दम कम है, क्षमता है और वैसे भी जिस पड़ाव पे ये मुकाबला खड़ा है यहां से सिर्फ 7 गेंदे बची है और रोहित मेरा ऐसा अनुमान है कि भारत 195 तक पहुंचेगा। आप अपना अनुमान बताइए।
1: इट डिपेंड्स ऑन इफ श्रुति मंदना इज फेसिंग द मोर नंबर ऑफ डिलीवरीज, इफ शी कैन टेक मोर चांस राइट नाउ, रेज अ हैंड अप एंड से आई एम गोना फेस द लास्ट 6 बॉल्स, I would possibly say 200 is still on the cards because that's what Mandana can do. She's destructive. 15 runs in the final over, definitely on. But at the same time, she'll need that support. Bharti Fulmali will have to just tell Shruti Mandana that all right, don't you worry, I'm here at the other end. If needed, I'll strike too. But the last 6 balls, it belongs to you.
0: Bharti Fulmali ek yuva khiladi hai, nawa mukabla khel rahi hai, 86 run unke balle se ab tak aaye aur sarvashreshth jo unka score hai South Africa ke virudh 40 runon ka aaya tha. अमूमन ऐसा कहा जाता है कि उम्मीदों पे आकाश टिका है, टिके हम भी हैं, टिके आप भी रहिए और भारतीय टीम का स्कोर कहाँ टिकेगा वो पता चल जाएगा आने वाली कुछ 6 गेंदों में, क्योंकि 19वें ओवर की समाप्ति एक डॉट गेंद के साथ हुई है। 185 रन 4 विकेट के नुकसान पे भारत का स्कोर है। स्मृति 120 पे बल्लेबाजी कर रही है, 62 गेंदों का सामना किया है भारती, पहली गेंद का सामना किया और अब तक अपना खाता खोला नहीं है। बची हुई 6 गेंदों में लक्ष्य हांगकांग के विरुद्ध क्या रहने वाला है, उनके कप्तान ने कहा था कि वो 150 तो चेज करने के लिए तैयार है, लेकिन किसने सोचा था कि भारत 190 के आसपास भी आपसे चेज करवाएगा या शायद उससे भी तेज।
1: Well, this has been a day where records have toppled so frequently that it's kind of hard for us to keep track, and that's exactly where our statistician Manoj Kumar has given an incredible record-breaking feat of Mandana. This is her 93rd instance where she's equaled Mithali Raj's record of scoring 50 plus knocks across all formats.

0: countrywide.
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
2: अशोक कुमार जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्ते
2: अशोक जी। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां हम देख रहे हैं, जल संकट की बात हो या फिर कुछ इलाकों में भूजल स्तर गिरने की बात कही जाती है, तो जल को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हम परिस्थिति अपने सामने देख रहे हैं, इसमें आम नागरिकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरी चीज की इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है?
3: जल के संकट के बारे में आपने बताया, बट एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे पिछले कई दशकों से जितने भी बारिश आ रहे थे उतनी बारिश अभी भी आ रही है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वाटर मैनेजमेंट में वी आर नॉट एबल टू वाटर मैनेज द वाटर प्रॉपरली। इसलिए ये जन भागीदारी की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जल आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदला करने के बाद ही हम मैक्सिमम वाटर सेव कर सकते हैं। वो देखते आंकड़े बताएंगे तो तकरीबन 1000 से 1100 mm रेनफॉल हर साल हमको मिलते हैं। कभी महीने में इधर उधर हो सकता है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो हर साल बारिश जितना आना है वो आते रहते हैं, और तकरीबन 4000

बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी हमको मिलता है। और जब बारिश अधिकतम होता है तो कभी कभी फ्लड्स होता है, बाढ़ हो जाते हैं और पानी बह के चले जाता है। और 6 महीने के बाद जब समर आ जाता है तो पानी की दिक्कत बढ़ जाते हैं, कई जगह पर पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता है। तो अगर हम ये जो बारिश में जितने पानी आता है उसी को हम संभाल के रखे, जन भागीदारी से संभाल के रखे और समर में यूज करेंगे तो हमारा वाटर समस्या

0: जल संरक्षण के लिए और जो हमारे सामने भूजल का संकट है या फिर पीने के पानी के पर्याप्त उपलब्धता की बात करते हैं उसके लिए?
1: जैसे मैंने बताया, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज इम्प्रॉपर और इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट। भारत में बहुत सारे जल भूगर्भ से, मतलब अंडरग्राउंड वाटर से निकाल के सिंचाई के लिए यूज करते हैं, पीने के पानी के लिए यूज करते हैं। अगर हम अंडरग्राउंड से पानी को खींचते रहे और वापस उसको रिचार्ज नहीं करते, तो एक दिन पानी तो खत्म हो ही जाएंगे। तो इसलिए 2021 से हमने नेशनल वाटर मिशन की तरफ से और प्रधानमंत्री के आदेश पे हमने एक कैच द रेन कैंपेन शुरू किया, जिसका जिक्र आपने किया था। कैच द रेन कैंपेन में ये है कि स्लोगन द कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां बरसे जब भी बरसे पानी का संचयन करना है। तो ये कार्यक्रम जन भागीदारी से हम कर रहे थे, क्योंकि ये बारिश सब जगह में होते, खेत में, घर में, गांव में, शहर में, सब जगह में बारिश पड़ती है। वो बारिश के पानी को अगर हम वही के वही संचय करके रखेंगे तो वाटर टेबल बढ़ जाता है और ये पानी हम यूज करके समर में भी हमारे काम में आ जाता है। इसलिए ये जो कैच द रेन कैंपेन वॉज वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, एंड प्रधानमंत्री तो 2021 से इसके बारे में बोलते रहते थे। उन्होंने ही ये कैंपेन 2021 में देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन के रूप में स्टार्ट किया था।
0: अशोक जी, जल संकट की जब हम बात करते हैं तो भारत के विकास और सामाजिक स्थिरता की भी यहाँ पर बात करना जरूरी हो जाती है, और साथ ही भारत में नदियों और जल स्रोतों की सफाई भी एक बड़ा टास्क हमारे लिए है, ताकि जो भी जल हमारे पास अभी उपलब्ध है उसको इस तरह से प्रभावी बनाया जाए कि ताकि उसको आराम से इस्तेमाल में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है? क्या आधुनिक समय में जो हमारे पास उपकरण है, यंत्र है, उनका इस्तेमाल करना, या फिर जन भागीदारी और जन जागरूकता?
1: वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताया मैंने, और साथ ही साथ पिछले कई सालों से हमने देखा कि ये रिवर पोल्यूशन को भी एड्रेस करने के लिए काफी काम हो रहा था। उसमें एक था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा नमामि गंगे, जब हमने सब लोगों को मिला के जन भागीदारी से गंगा नदी को साफ करने का कार्यक्रम में जुट गए थे। तो ये पिछले कई सालों से अभी एनजीटी के मार्गदर्शन में हम कई जगह में वाटर रिवर्स के पोल्यूशन के लेवल मॉनिटर करते हैं और वाटर पोल्यूशन लेवल मॉनिटर करके बताते हैं कि इस एरिया में वाटर पोल्यूटेड है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है करके। तो अमृत स्कीम के अंदर और नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट के स्कीम्स के अंतर्गत और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत कई कार्यक्रम हमने शुरू किया, क्योंकि ये जो जल में पोल्यूशन आता है रिवर्स में मुख्यतः, वो ज्यादातर सुवेज की वजह से होता है। शहर से गंदा पानी नदियों में छोड़ते हैं और वो गंदा पानी अच्छे पानी से मिलके वो पानी को खराब करते थे। तो ये पिछले कई सालों से हमने एसटीपीस बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, जहाँ पे ये स्वेज वाटर को ट्रीट करके अच्छा पानी नदी में छोड़ने का कार्यक्रम किया। उसमें काफी सफलता भी हुई है, मगर बहुत सारे काम अभी बाकी है। बहुत शहरों में अभी ये एसटीपीस बनाना है और उसको चालू कराना भी है। ये कार्यक्रम अभी चल रहा है।
0: अशोक जी, अभी आपने शहरों में पानी की पाइपलाइनों से होने वाली लीकेज की बात की है, और जो अच्छा पानी होता है उसमें गंदा पानी मिल जाता है, उससे भी समस्या आती है। तो प्रधानमंत्री ने इसके लिए कहा है कि सही योजना, पक्के इरादे, पर्याप्त संसाधन और सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इसको एक अवसर में बदला जा सकता है, ताकि जो भी हमारे सामने इससे संबंधित दिक्कतें आ रही उनको दूर किया जाए।
1: एक्चुअली देखा जाए तो कई सालों से प्रधानमंत्री पानी के जो मैनेजमेंट के बारे में जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात की थी। जैसे इन्होंने कल बताया था कि सबका प्रयास के साथ हमको जल के क्वालिटी और क्वांटिटी के दोनों में मैनेज करना पड़ता है। वाटर सिक्योरिटी में समस्या आता है तो उसमें दो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं, एक तो वाटर क्वांटिटी के मुद्दे होते हैं और दूसरा वाटर क्वालिटी के होता है। ये वाटर क्वांटिटी के लिए जैसे मैंने बताया, हम अगर रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे तो हमको पानी मिल सकता है, अगर हम वाटर यूसेज को रिड्यूस करेंगे तो भी हमको पानी मिल सकता है, क्योंकि अगर हम एक जगह पे 10 लीटर या 50 लीटर पानी यूज करते हैं, अगर उसका यूसेज रिड्यूस करके 10 लीटर या उससे कम करेंगे तो हमको बचत मिल जाता है, वो बचत पानी का ना सेविंग होता है। तो ये वाटर स्कैर्सिटी के लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि हम पानी जो बचत करते हैं वो दैट विल बी वाटर जनरेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग। सेकंड, हमको एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वाटर सिक्योरिटी में, एक तो रीयूज ऑफ वाटर और रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, ये सब इंडस्ट्री एरिया में होता है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो वाटर सिक्योरिटी के जो वाटर क्वांटिटी के बारे में बोलेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी जो आंकड़ा है वो बहुत कम है. तो जैसे प्रधानमंत्री ने बताया अगर हम स्कीम्स तैयार करें और टेक्नोलॉजी को यूज करके और प्रॉपर मैनेजमेंट करें तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्रीकल्चर में 85% वाटर हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. इंडिया में उनका वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत पुअर है, 30% या 33% वाटर यूज एफिशिएंसी है. अगर हम

0: अच्छे टेक्नोलॉजी यूज करके, अच्छा इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके या ड्रिप इरिगेशन के ऐसे यूज करेंगे तो हमारा वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं. तो ऑफिशियल हम स्कीम्स तैयार करके लोगों को
1: जी
0: वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने का सलाह दे और उनका सपोर्ट दे, जैसे अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बेटर इरिगेशन टेक्निक्स बताएंगे या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रचार करे, तो हम वाटर यूज एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं और डेफिनेटली हमारा वाटर समस्या कम हो सकता है.
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण को केवल एक सरकारी कार्यक्रम न बना करके बल्कि जन भागीदारी से जोड़ने और जल उत्सव को बढ़ावा देने की बात कही है. आज के समय में जब जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना बदस्तूर जारी है, लेकिन भूजल का दोहन भी उतना ही हो रहा है, तो क्या जन भागीदारी अकेले इस समस्या का समाधान कर सकती है या फिर हमें कानून या फिर आर्थिक प्रोत्साहन या स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए आगे लाना पड़ेगा?
0: जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, सबका प्रयास है, सबको इन्वॉल्व करके जन भागीदारी से ही हम कर सकते हैं. जैसे आपने बताया ग्राउंड वाटर का दोहन, इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला देश है. हम पानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ये इरिगेशन के लिए बहुत पानी ग्राउंड से निकाल के यूज करते हैं, तो हमको एक तो उसकी यूज कम करना पड़ता है, दूसरा उसमें रिचार्ज करने के लिए भी हमको प्रयास करना है. तो जन भागीदारी में अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो बहुत पानी हम बचा सकते हैं. पहले क्या करते थे हम लोग, डैम्स बनाते थे, तो ये जो बारिश में जो पानी गिरते हैं वो एक साथ बह के कई एक जगह पर जाके हम इकट्ठा करके वहां पे बड़े बड़े डैम्स बनाते, बकरा नांगल डैम ऐसे बनाते थे. बट अभी तो ये डैम्स बनाने में बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि वहां के एनवायरमेंटल का प्रॉब्लम आता है, सबमर्जेंस के इश्यू आते हैं, लोगों को बहुत दिक्कतें होते हैं. इसीलिए डिसेंट्रलाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, तो कैच रेन कैंपेन ने जो प्रधानमंत्री ने किया वो किया. इसमें क्या किया, ये जन भागीदारी में होते हैं, बिकॉज हर एक व्यक्ति, हर एक गांव वाले, हर एक शहर वाले, हर एक आदमी इसमें अभियान में जुट सकते हैं. अपने घर में, अपने खेत में जितने भी बारिश आते हैं उसको अगर वो संचय करके रखेंगे तो वी कैन सेव अ लॉट ऑफ वाटर, वो तो भूजल का स्तर भी बढ़ा सकते हैं. तो इट इज ए डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक कैंपेन एंड ये जन भागीदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है.
1: अशोक जी, प्रधानमंत्री ने पानी बचाने वाली तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाने की बात कही है और दुनिया के जो बेहतरीन तरीके हैं उनसे सीखने पर जोर दिया, यानी कि हम केवल अपने देश तक सीमित अगर ना रहें, भूजल बचाने के बारे में, जल संरक्षण के बारे में पूरी दुनिया से अगर अच्छी बातें सीख सकते हैं तो ये बहुत आवश्यक सी चीज है. आपको क्या लगता है इससे?
0: कई स्टेट लाइक इसराइल और नेदरलैंड, वो पानी में उनका बहुत दिक्कतें थे, तो उन्होंने कैसे टेक्नोलॉजी की यूज करके कई नए नए आविष्कार चला के पानी का बचत किया है, पानी का वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ा है और वो जनता का जो वाटर की समस्या का हल निकला. आप देखे जाए तो इसराइल के ऐसा देश है जहाँ पे हमसे बहुत कम बारिश गिरती है और वहाँ पे 92% से ज्यादा पानी वो रिसाइकल करके यूज करता है. एग्रीकल्चर में वो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो ज्यादा एडवांस्ड है, प्रिसिशन इरिगेशन बोलते हैं. जितना पानी चाहिए मतलब बूंद बूंद के हिसाब से वो मेजर करके पौधे को देते हैं और वो पौधा 100% वाटर यूज करते हैं. वो बड़ा कॉस्टली टेक्नोलॉजी है बट ये एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहाँ पे जो रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है वो इसराइल में यूज करते हैं. सिमिलरली नेदरलैंड में फ्लड को मैनेज करने के लिए वो कई टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत सारे सिंगापुर में और श्रीलंका में है. तो हम बाकी देशों से भी जानकारी ले सकते हैं बट हमारे भारत में भी इतिहास में भी देखा जाए तो प्राचीन काल में भी हमारे जो पूर्वजों ने पानी को संभालने के लिए काफी कार्यक्रम किए थे, पानी को महत्व देते थे और कई जगह पे आपने टांका देख सकते हैं. यहाँ पे दिल्ली में अग्रसेन की बावड़ी के बारे में आप जानते हैं और रानी की बाव है जो गुजरात में, तो कई जगह में ऐसे स्टेपल्स भी है. आपको याद है मोहनजोदड़ो में भी कॉमन बाथ की बात करते थे और ड्रेन्स की बात करते थे और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की बात है. तो हमारे देश में भी बहुत सालों से वाटर हार्वेस्टिंग का प्रदर्शन चलते आ रहा था बट साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री ने कहा बाकी देशों से भी हम लर्न कर सकते हैं और उसका अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज करके हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं.
1: जी अशोक जी, हमारे देश में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में जो पानी इस्तेमाल होता है वो उपचारित करके उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें किस तरह की योजना बनानी चाहिए, कैसे उपाय करने चाहिए कि जो औद्योगिक क्षेत्रों से निकला हुआ पानी उसको हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर सके अन्य कामों में?
0: देखो दिस इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वो सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एक तो जो पानी हम स्वेज से या इंडस्ट्रियल वे से भी निकलते उसको ट्रीट करके हम इरिगेशन में सिंचाई में काम लगा सकते हैं। सिंचाई में 100% प्योर वाटर देने की जरूरत नहीं है, बट इसपे अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट करके हम ये पानी हम सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट

0: इज ड्रिंकिंग वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो तो 100% प्योर होना चाहिए. अगर हम स्वेज वाटर को ट्रीट करके सफिशियंट पैरामीटर्स सफिशियंट ला करके बस थोड़ा फॉस्फोरस ज्यादा रहता भी अब प्रॉब्लम नहीं, वो इरिगेशन में यूज करते हैं. वो पानी हम पी नहीं सकते मगर इरिगेशन के लिए काम आ सकता है. मेरा कहने का मतलब है कि ये अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स पे वाटर ट्रीट करके हम पानी सिंचाई के लिए यूज कर सकते. तो ये क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं क्योंकि जहां पे तापमान बढ़ने से आइस और ग्लेशियर मिल करके वो किसी लेक में डाल के वहां से वो पानी बहुत जोर से बाहर आ जाते हैं, इसी की वजह से वो बाढ़ हुए थे. इसमें हमारे वैज्ञानिकों को बहुत सैटेलाइट इमेजरी सब यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके वी कैन प्रिडिक्ट द फ्लो वाटर फ्रॉम दिस लेक्स. तो अगर हम सैटेलाइट मैपिंग करके या ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करके गोल्फ ग्लोव को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो देन वी कैन प्रिडिक्ट फ्लड एंड रिड्यूस द डैमेज, अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो डेफिनेटली हमारे IITs और टेक्नोलॉजी ISRO जैसे इंस्टीट्यूशंस को इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं.
1: जी अशोक जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए. बहुत बहुत आभार.
0: थैंक यू.
2: अभी आप सुन रहे थे जल संरक्षण और प्रबंधन में तकनीक और जन भागीदारी के महत्व पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044. कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख दा वेवर से आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड, फ्यूल या सप्लाई चेन, हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद को खत्म करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर सफलतापूर्वक वार्ता पूरी होने का स्वागत किया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भारत को एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया।
2: 20 साल में बेल्जियम के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ आना बहुत लंबा समय है। इन 20 सालों में भारत बहुत बदला है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के दौरान तो और भी ज्यादा बदलाव हुआ है। आज भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश भी है। भारत आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है और एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी बन गया है। भारत की आवाज इस क्षेत्र से कहीं आगे तक सुनी जा सकती है।
0: वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, जीव विज्ञान, सेमीकंडक्टर, रक्षा विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज, नवीकरणीय ऊर्जा, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेल्जियम की रक्षा कंपनियों से भारत की विनिर्माण क्षमता के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को जोड़कर संयुक्त रूप से रक्षा उपकरण विकसित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में भारत बेल्जियम रक्षा सीईओ बैठक में उन्होंने साइबर सुरक्षा, एआई आधारित ड्रोन, पानी के भीतर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और उन्नत हथियार प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। बेल्जियम के रक्षा और विदेश व्यापार मंत्री थियो फ्रांकेन ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर जोर दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8% सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हासिल करने में छोटे और मध्यम उद्योगों

0: महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। श्री गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते भारत को प्रमुख निर्यातक देश बनने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान से नहीं हो सकता। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन पहले किर्गिस्तान के बिश्केक में दिए बयान को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय है। डॉ जयशंकर ने यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध समाप्त करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का स्वागत किया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। बैठक में समुद्री सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। नेपाल तिब्बत में आए विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1252 हो गई है। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4216 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए दो और विमानों के जरिए आज 21.5 टन राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। महिला क्रिकेट में भारत ने दुबई में एशिया कप के ग्रुप ए मुकाबले में हांगकांग के सामने 194 रन का लक्ष्य रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India and Belgium today reaffirmed their commitment to deepening trade, investment and economic cooperation. Prime Minister Narendra Modi and his Belgian counterpart, Bart De Wever, welcomed the growing diversification of sectors in bilateral trade in the India-Belgium joint statement released after the talks between the two leaders in New Delhi. Both leaders welcomed the launch of the India-Belgium strategic dialogue. India and Belgium have set an ambitious goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. The two sides identified significant potential for cooperation in pharmaceuticals, life sciences, semiconductors, defense manufacturing, critical minerals, renewable energy, ports, logistics, space and advanced technologies. India and Belgium today exchanged several agreements including letter of intent on defence cooperation and MOUs in the fields of renewable energy for tackling transnational crimes including cybercrime and diplomatic training. In his press statement, Prime Minister Modi emphasised that India's economy has maintained its momentum even in this challenging environment. He said in the last quarter, India recorded a growth of 7.8%. He further said that today, India's growth story is becoming a source of confidence and new opportunities for the world. He highlighted that the scope of bilateral cooperation has expanded beyond traditional sectors to reach strategic areas such as defense and clean energy.
2: हम अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को डबल करने का लक्ष्य साकार कर लेंगे। फ्रेंड, रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। आज हमने दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई है।
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today lauded the small and medium enterprises industries for playing a pivotal role in achieving 7.8% GDP growth in the first quarter of the current fiscal year. While chairing a national workshop on leveraging FTA's outreach program in New Delhi, Mr. Goyal expressed confidence that free trade agreements signed with various countries will pave a steadfast pathway in becoming a major exporter. In Uttar Pradesh, heavy rain and the release of water from barrages have affected 23 districts from flood. Prime Minister Narendra Modi today spoke to District Magistrate Satyendra Kumar of his parliamentary constituency Varanasi over the phone to inquire about the flood situation. Prime Minister inquired about the water levels of rivers in Kashi and the arrangements being made in relief camps. Chief Minister Yogi Adityanath also conducted an aerial survey of flood-affected areas in Farukhabad. He reviewed rescue and relief operations. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar today met Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Kyiv and discussed